सुप्रभात अंबाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 8 जून 2026 सोमवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्य उदय हुआ है 5:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:24 पर। आज वर्ल्ड ओशन डे भी मनाया जा रहा है।

इंसान को जब थोड़ा सा भी अधिकार मिल जाता है तो वो अभिमानी प्रभु परमात्मा के भी विपरीत बोलने लगता है और ऐसे घिनौने कार्य करता है जिन्हें देखकर देवता भी रो पड़ते हैं।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: जय शिव शंभु। प्रिय भक्तों, आज हम आपको कैलाश के निवासी उमापति त्रिनेत्रधारी, जिनके शीश पर चंदा और जटाओं में माँ गंगा शोभायमान हो रही हैं, हम उन अजर अमर अविनाशी जो सत्य हैं, शिव हैं और सुंदर भी हैं, उन शिव भोलेनाथ की महिमा का बखान करने जा रहे हैं, जिन्होंने इस सृष्टि को समुद्र मंथन के समय कालकूट विष को पीकर किस प्रकार बचाया। तो आइए श्रवण करते हैं कथा में, किंतु उससे पहले मेरे साथ श्रद्धा भाव से बोलिए, जय हो भोलेनाथ।

पावन स्थान भारत वर्ष में ही नहीं अपितु समस्त संसार में जाना जाता है। यहाँ भगवान नीलकंठ शिवलिंग रूप में विराजमान है।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: जी हाँ, आज सोमवार है। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
3: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत एक बातचीत सुनिए डॉक्टर शिल्पी शर्मा आयुर्वेदाचार्य के साथ। आपकी बातचीत का विषय है आयुर्वेद और उपचार।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। हमारे साथ आज स्टूडियो में आमंत्रित है डॉक्टर शिल्पी शर्मा जी, एक सफल आयुर्वेदाचार्य जो अंबाला से है। यह कहना सही रहेगा कि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार आयुर्वेद का इतिहास 5000 साल से भी पहले का है। यह हम सबके स्वास्थ्य के साथ कैसे जुड़ा है, समझते हैं आज सरल शब्दों में अंबाला के जाने माने आयुर्वेदाचार्य, पंचकर्मा के जानकार डॉक्टर शिल्पी शर्मा जी से। स्वागत आपका डॉक्टर शिल्पी शर्मा जी स्टूडियो FM 90.0 MHz पर।
4: धन्यवाद। रेडियो वितस्ता के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिल्पी शर्मा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मैं पिछले 20 सालों से आयुर्वेदा में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे नेशनल और इंटरनेशनल काफ़ी तरह के पेशेंट्स हैं जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं। अम्बाला में मेरा क्लिनिक है। मेरा मेन पर्पस है लोगों को आयुर्वेदा के लिए अवेयर करना। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो रोहतक यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है और मुझे बचपन से ही आयुर्वेद के प्रति रुझान था। और जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसके बाद मैं अपने पेशेंट से जुड़ी और मैं आयुर्वेदा को और आगे लेके गई और यही मेरा लाइफ का पर्पस है, आयुर्वेदा के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस देना।
1: सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदा हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है स्वास्थ्य के संदर्भ में, और आयुर्वेदा चिकित्सा अलग कैसे है?
4: आयुर्वेद बेसिकली 5000 साल पुरानी पद्धति है, सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इट्स नॉट अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इट्स अ लाइफस्टाइल। आयुर्वेद जो है वो उसका पर्पस है स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, विच मीन्स स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार व्यक्ति है उसका इलाज करना। तो आयुर्वेद ज्यादा प्रिवेंशन पे काम करता है रादर देन ट्रीटिंग अ पेशेंट। इसीलिए आयुर्वेद जो है एक दिनचर्या है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट का इलाज करना है। आयुर्वेद ये कहता है कि आप पहले ही अपने आप को बचा लो ताकि आप पेशेंट बनो ही ना। तो वो मेनली उसका फोकस रहता है कि आपके दिनचर्या कैसी हो, आपका खान पान कैसा हो, जिसकी वजह से आप बीमार ही ना हो। आयुर्वेद जो है वो हर पर्सन के लिए अलग है, इट्स अ साइंस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक पर्सन पे जो मेडिसिन काम करती है वो दूसरों पे काम नहीं करती। तो आयुर्वेद जो है सब पे एक समान नहीं है
1: जी।
4: क्योंकि आयुर्वेद जो बेस्ड है वो वात पित्त कफ पे है। आयुर्वेद ये मानता है कि ये जो पूरी सृष्टि है, ये पूरा ब्रह्मांड है, इसमें जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं, जितनी भी सजीव और निर्जीव चीजें हैं, ये सब 5 तत्वों से मिलकर बनी है, आकाश भूमि पृथ्वी वायु और जल। तो ये जब 5 महाभूत आपस में मिलते हैं तो 3 तरह की एनर्जी बनाते हैं जिसको वात पित्त और कफ कहा गया है
1: जी।
4: तो ये तीनों ही एलिमेंट हम सब में बर्थ के टाइम रहते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट जो हैं इन तीनों ही एलिमेंट में से एक ऐसा दोष होता है जो कि डोमिनेट हो जाता है, बाकी 2 रिसेसिव फॉर्म में रहते हैं। तो वही आपकी प्रकृति बना देते हैं, उसी से आपकी फिजियोलॉजिकल और मेंटल स्टेट बन जाती है, आप उसी तरह से एक्ट करते हैं। तो हर पर्सन की प्रकृति अलग है, हर किसी की अलग बॉडी टाइप है, और जब ये तीनों दोष जब बैलेंस में रहते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, और जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हम जो है वो डिजीज हो जाती है। वो डिपेंड करती है कि कौन सा दोष इम्बैलेंस हुआ है, उसके हिसाब से हमारी डिजीज बन जाती है।
1: जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम आज सरल शब्दों में आयुर्वेदा को समझने की कोशिश करेंगे, आपने ये कहा कि ये हमारी एक जीवन शैली का एक तरीका है, क्या मैंने सही समझा?
4: बिल्कुल सही समझा आपने, बिकॉज आयुर्वेद में एक दिनचर्या डिसाइड की गई है कि अगर हम उस दिनचर्या को फॉलो करें तो हम बीमार ही नहीं होंगे
1: जी।
4: उसमें उन्होंने बताया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना
1: जी।
4: ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होगा कि आपकी जो वात दोष है वो शांत रहेगा, आपका जो सुबह अगर जैसे जो लोग लेट उठते हैं उनका कफ दोष बढ़ जाता है जिस कारण वो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, वेट पुट ऑन कर लेते हैं, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, उस टाइम मेडिटेशन करने से, उस टाइम सैर करने से, पढ़ाई करने से, क्योंकि वो सबसे बेस्ट टाइम माना गया है सुबह, वो वात का समय है, सुबह 2 से लेकर 6 बजे का समय वात का है। देखिए आयुर्वेद ने कितनी खूबसूरती से पूरे दिन को भी समय में बांट दिया है कि कौन कौन सा दोष किस टाइम पे डोमिनेंट होगा और आपको उसी हिसाब से अपनी लाइफ को जीना है। सुबह 2 से 6 का टाइम वात का है तो आपने उस टाइम मेडिटेशन करनी है, स्टडी करनी है और सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, क्योंकि वो टाइम जो है वो वाइब्रेंट टाइम है, उस टाइम आप शांत रहते हैं। उसके बाद सुबह उठने के बाद 6 से 10 का टाइम कफ का टाइम है, तो उस टाइम पे अगर आप लेट उठेंगे तो आपसे उठा ही नहीं जाएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो मुझे ये पूछते हैं कि मैम हमसे सुबह उठा नहीं जाता तो कैसे उठें? तो मैंने उन्हें कहा आप चाहे 5:45 पे उठ जाओ, 6 बजे के बाद नहीं उठना, उससे पहले उठना है, आप डेफिनेटली सुबह उठ जाओगे। तो उस टाइम एक तो उठने में दिक्कत होती है क्योंकि कफ बढ़ जाता है, तमस का टाइम हो जाता है वो
1: जी।
4: तो उस टाइम उठने से आपको क्या होगा कि आप बेटर फील करेंगे, एनर्जेटिक टाइम है वो, क्योंकि कफ का टाइम है, एंड्यूरेंस काफी अच्छी होती है, तो इस टाइम पे हम फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, एक्सरसाइज का टाइम है ये, सुबह 6 से 10 और शाम को 6 से 10, तो ये दोनों ही टाइम कफ के हैं। उसके बाद जो तीसरा 10 बजे के बाद का जो टाइम है, 10 से 2 का टाइम, वो पित्त का टाइम है, यानी उस टाइम आपने डाइजेशन का टाइम है जो कि मेन मील का टाइम है, आयुर्वेद मेन मील 10 से 2 के बीच में रिकमेंड करता है। तो उस टाइम अगर आप खाते हैं वो आपको प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, पित्त आपको एम्बिशियस बनाती है, तो आपकी जो उस टाइम पे आप जो भी आपके डिफिकल्ट टास्क हैं वो आप उस टाइम पे करिए। तो इस तरह से सुबह उठ के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना, देन उसके बाद आपको मसाज करना, नस्य करना जिसमें नेजल ड्रॉप्स डालते हैं ताकि आपके जो गर्दन के ऊपर के जितने भी अंग हैं उनके रोग ना हो, उसके लिए नस्य किया जाता है। देखिए अगर आप नस्य रेगुलर कर रहे हैं बचपन से ही आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो आपको कभी भी आपके बाल सफेद नहीं होंगे, आपकी आईसाइट बढ़िया रहेगी, आपको थ्रोट से रिलेटेड इशू नहीं होंगे, तो बताइए बीमारी कहां से आएगी अगर हम आयुर्वेद को फॉलो करेंगे। तो इसके बाद फिर दातुन करना, दातुन के लिए भी आयुर्वेद कहता है कि आप नीम और जामुन की दातुन करिए, और उसके बाद फिर बॉडी मसाज के लिए कहता है जिसको अभ्यंग कहते हैं या स्नेहन कहते हैं आयुर्वेद में, उससे क्या होता है आपका वात दोष जो है वो बैलेंस रहता है। उसके बाद फिर आपको स्नान करने के बाद नहाने की सलाह देता है, फिर आपको भोजन करना है, उसके बाद आपको अपना काम करना है। मेन भोजन वो दोपहर के भोजन को आयुर्वेद में मेन माना गया है, मेन मील ऑफ द डे जो है वो लंच टाइम है आपका, तो उस टाइम आपको गरिष्ठ आहार करना है। ब्रेकफास्ट आयुर्वेद कहता है कि आप उस टाइम या तो फल फ्रूट का सेवन करिए या बिल्कुल हल्का आहार रखिए, मेन आहार आपका जो है वो दोपहर का टाइम है क्योंकि वो पित्त का समय है। उसके बाद फिर आपको रात को भी अर्ली डिनर करने की सलाह देता है कि सूर्यास्त से पहले आपने डिनर कर लेना है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो आप सोने के टाइम में और जो आपका डिनर का टाइम है उसमें 2-3 घंटे का फर्क हो जाता है, उसके कारण आपकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है सोने से पहले। और अर्ली सोने के लिए भी वो 10 बजे तक का टाइम कहता है क्योंकि 10 से आगे 2 बजे तक पित्त का टाइम शुरू हो जाएगा। तो अगर आप 10 बजे के बाद सोते हैं या 11 बजे के बाद सोते हैं तो आप सो ही नहीं पाएंगे, आपके जो स्लीप है वो डिस्टर्ब रहेगी 2 बजे तक, क्योंकि 2 बजे तक पित्त का टाइम है। आपने देखा होगा आजकल बच्चे भी 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं क्योंकि वो एक्टिव हो जाता है माइंड, आपकी डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो आपको नींद आएगी कि नहीं आप डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन अगर आप 10 बजे सो गए हैं तो वो डेफिनेटली आपको बिल्कुल डीप स्लीप आएगी, और 10 से 6 बजे तक का आपका टाइम आयुर्वेद बताता है सोने के लिए, और 6 बजे से जस्ट थोड़ा पहले या 5 बजे अगर आप उठ सकते हैं तो वो बेस्ट टाइम है।
1: डॉक्टर साहब आपने जो जानकारी दी इसमें कई सारी चीजें हैं जो शायद हम आज के दौर में देख नहीं पाते हैं, खास करके आज के युवा, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गया है। जब हमारे समय में सोने का टाइम होता था तब वो जाग रहे होते हैं, और जब हम सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग जब हम उठ जाते हैं तब वो सोए होते हैं।
4: बिल्कुल।
1: तो किस तरीके से आज की जो नई पीढ़ी है उसको आयुर्वेदा के इन तरीकों से हम समावेश करें?
4: हाँ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स मेरे पास भी आते हैं। जब कोविड का टाइम था उस टाइम लोगों को पीसीओडी बहुत ज्यादा हो गई थी, यंग जनरेशन को, मतलब हर 9 में से 1 बच्चे को पीसीओडी थी।
1: अच्छा।
4: तो उस टाइम क्या दिक्कत आ रही थी, मैंने जैसे पेशेंट से पूछा कि आपका सोने उठने का टाइम क्या है, देन उन्होंने कहा कि जब हमारा काम का टाइम होता है हम जस्ट एक घंटा पहले उठ जाते हैं, तो रात को भी लेट तक वो काम करते रहते हैं। उससे और कुछ नहीं हुआ, उनकी बॉडी ने दिखा दिया कि उनके जो दोषास हैं वो इम्बैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि रात को लेट सोने से वात दोष बढ़ जाता है बॉडी में, और जब हम सुबह लेट उठते हैं तो कफ दोष बढ़ जाता है, और दोनों ही दोष इम्बैलेंस होने की वजह से उन्हें पीसीओडी की दिक्कत हो गई।
1: पहले समय में अगर हम देखें, कुछ साल पहले अगर हम जाएं, तो शायद बीमारियां भी कम होती थी, क्योंकि जो तरीका रहन सहन का वो आयुर्वेदक के अनुसार ही होता था।
4: बिल्कुल सही,
1: अच्छी सेहत अच्छा स्वस्थ के मायने आपने बता दिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदा होलिस्टिक सिस्टम कहा जाता है, ये पेशेंट को कैसे प्रभावित करता है?
4: जी, आयुर्वेद में बेसिकली पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दो तरह के सिस्टम है
1: जी।
4: एक को हम शोधन कहते हैं और एक को शमन कहते हैं। शोधन का मतलब है बॉडी को सेलुलर लेवल पे डिटॉक्स करना, बॉडी के जितना भी अंदर टॉक्सिन्स है उसको बॉडी से रिलीज करना, जिसको आयुर्वेद में आम कहते हैं
1: जी।
4: तो उसके लिए आयुर्वेद पंचकर्मा थेरेपी अपनाता है। पंचकर्मा थेरेपी, पांच तरह के एक्शंस होते हैं इसमें, पांच तरह के कर्म है जिस कारण इसको पंचकर्म कहा गया है, जिसके थ्रू हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। और इसमें जो पांच क्रम है उसमें वमन, विरेचन, वमन मींस वॉमिटिंग, विरेचन मींस परगेशन, बस्ती यानी एनीमा, एंड देन रक्त मोक्षण जिसमें ब्लड लेटिंग करते हैं, एंड देन नस्य जिसे कि नेजल ड्रॉप्स की फॉर्म में आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली इन प्रोसेस में क्या होता है कि इससे पहले एक पूर्व कर्म होता है। पूर्व कर्म में आपको स्नेहन और स्वेदन किया जाता है, यानी कि आपको बॉडी को मसाज दी जाती है, स्टीम दी जाती है, ताकि जो चैनल्स हैं उनको ओपन किया जा सके, सर्कुलेशन बढ़ाया जा सके, ताकि जो सेलुलर लेवल पे टॉक्सिन्स पड़े हैं वो रिलीज हो सके। उसके बाद वमन और विरेचन के लिए घी पिलाया जाता है पेशेंट को।
1: अच्छा।
4: वो तब तक पिलाया जाता है तब तक जब तक कि पेशेंट के सारे टॉक्सिन्स उसके स्टमक में ना आ जाए। लाइक उसको जब घी पिलाते हैं तो 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन में पर्सन के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार, उसकी विकृति के अनुसार उसका डिसाइड होता है कि वो कितने दिन तक उसको घी पिलाया जाएगा। उसके बाद जब हमें लगता है कि अब पेशेंट रेडी है मेन प्रोसेस के लिए, तब हम उसको फिर नियरेस्ट रूट से निकालते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट की कफ बढ़ी हुई है तो हम उसे वमन के थ्रू बाहर निकालेंगे, और अगर उसकी पित्त बढ़ी हुई है तो उसे विरेचन के थ्रू बाहर निकालेंगे, यानी मोशंस के थ्रू निकालेंगे। और अगर पेशेंट की वात बढ़ी हुई है तो हम उसको एनिमास देते हैं, बस्ती के थ्रू उसको ट्रीट किया जाता है। रक्त मोक्षण में बेसिकली जितनी भी स्किन डिजीज आती है उस केस में हम ब्लड लेटिंग करते हैं, जो कि जलोका के थ्रू यानी लीचेस के थ्रू होता है, या फिर हम डायरेक्टली वेन के थ्रू इम्प्योर ब्लड को बाहर निकाल देते हैं। और लास्ट में है नस्य। नस्य में हम नेजल ड्रॉप्स देते हैं, क्योंकि नासा को सिर का द्वार कहा गया है आयुर्वेद में। तो अगर हम नाक से मेडिसिन डालते हैं तो उससे आपके जितने भी सेंस ऑर्गेन्स हैं वो सारे लुब्रिकेट हो जाते हैं, आपके जो ब्रेन में प्रेजेंट ऑल्फैक्टरी लोब है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको जल्दी जल्दी अपर जो पार्ट है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती।
1: आपने जो ये प्रोसेस बता दिए, क्या ये किसी एक्सपर्ट के देखरेख में करने चाहिए या हम घर पे भी कर सकते हैं?
4: आप इसमें से सिर्फ नस्य है जो आप घर पे कर सकते हैं, बाकी सब आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही करने पड़ेंगे, उनकी गाइडेंस में करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें डोजेज और हर चीज वो है वो आप नहीं उसको अंदाजा लगा सकते कि कितना घी पीना है और कौन सी मेडिसिन से आपको पिलाई जाएगी तो आप वॉमिट कर पाएंगे। तो ये सब कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर ही डिसाइड करता है, खासकर अगर वो पंचकर्म जानता है।
1: तो श्रोताओं को हम ये बता देते हैं कि जो आज हम बातचीत कर रहे हैं आयुर्वेदा के बारे में, तो उसके बारे में अगर वो कोई भी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो वो जरूर अपने

0: अलग होगी। तो ये तीनों ही दोष जब इम्बैलेंस होते हैं तो डिफरेंट तरह की डिजीज पैदा करते हैं, और हम उसको नाड़ी परीक्षा के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि आपकी कौन सी विकृति है। प्रश्न पूछ के पता करते हैं पेशेंट से कि उसकी प्रकृति क्या है, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है कि अगर ज्यादा दोष अगर आपका डिस्टर्ब नहीं है तो हम शमन थेरेपी के थ्रू यानी कि आपको मेडिसिन देके ही उसको ठीक कर देते हैं, और थोड़ा सा डाइट और लाइफस्टाइल बताएंगे कि आपने क्या चेंजेस करने हैं, उससे ही आपको फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब डिजीज काफी ज्यादा होती है, क्रॉनिक होती है, तो उस केस में हम डिटॉक्स की सलाह देते हैं, और डिटॉक्स भी हम हर महीने में नहीं कर सकते। डिटॉक्स के कुछ पर्टिकुलर टाइम है, जो ऋतु संधि का टाइम है उसको आयुर्वेद जो है वो डिटॉक्स के लिए बेस्ट मानता है, क्योंकि उस टाइम आपके दोष ऑलरेडी बड़े होते हैं तो उनको निकालना और इजी हो जाता है। तो उस टाइम में हम पेशेंट को डिटॉक्स देते हैं, तो उससे उसके जो सेलुलर लेवल पे जब वो डिटॉक्स हो जाता है उसके बाद जब हम उसको मेडिसिन देते हैं तो उसका इफेक्ट पेशेंट पे ज्यादा रहता है।
1: आपने अभी पंचकर्मा की बात की है, आप पंचकर्मा विशेषज्ञ हैं, कृपया आप बताएं इसमें हम स्वास्थ्य लाभ कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से प्रक्रियाएं पंचकर्मा में है।
0: जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पंचकर्मा पांच तरह के कर्मों से जो है उसको डिफाइन करता है, जिसमें मैंने बताया वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण और नस्य। तो इसमें से जो वमन और विरेचन है, ये वमन को हम तब करते हैं जब हमारा कफ बड़ा हो, पित्त बढ़ने की टाइम पे हम विरेचन करते हैं, और अगर वात बड़ी हुई है तो हम बस्ती करते हैं, और अगर आपको स्किन डिजीज है या पित्त इम्बैलेंस है उस केस में हम रक्त मोक्षण भी करते हैं, और नस्य हम अपने जो साइनसिस से रिलेटेड इशू है या आपको प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, आईसाइट के इशू है या थ्रोट से रिलेटेड है, थायराइड के इशू है, तो उस केस में हम जो है नस्य करते हैं, या खासकर फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में भी नस्य का बहुत अच्छा रोल है। मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट ठीक किए हैं जो कि हम लोकल एरिया पे तो काम करते हैं, उसके साथ जब हम नस्य को इंक्लूड कर देते हैं तो मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं। वन ऑफ माय पेशेंट, उसकी जो गर्दन थी वो बिल्कुल मूव ही नहीं करती थी,
1: अच्छा।
0: और आफ्टर 15 दिन उसने जो थेरेपी ली नस्य की, उसके बाद अब 60-70% इंप्रूवमेंट है उसकी जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के केस में, मतलब अच्छे रिजल्ट हैं आयुर्वेद के।
1: जी, जैसे आपने अभी फ्रोजन शोल्डर की बात की, तो क्या कोई एक सरल सा टिप आप बता सकते हैं एक फ्रोजन शोल्डर को हम कैसे रिलीज करें या कैसे उसके दर्द से मुक्त हो सकें?
0: मोस्टली फ्रोजन शोल्डर उन पेशेंट्स में पाया जाता है जिनको डायबिटीज या उनके ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो,
1: अच्छा।
0: उन केसेस में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, या जो लोग नॉर्मली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो उन बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं करते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि उस जगह पे स्नेहन किया जाए गरम तेल लेके, क्योंकि आयुर्वेद ये मानता है जहां भी चीज फ्रीज हुई है या जहां पेन है वहां पे वात दोष बढ़ा हुआ है। वात की नेचर ड्राई और कोल्ड होती है, तो आयुर्वेद ये कहता है कि जब भी आपने किसी चीज को ट्रीट करना है तो उसके ऑपोजिट गुणों पे काम करना पड़ेगा। तो आपको ऑयल यूज करना है जो कि लुब्रिकेटेड होता है, और उसको हॉट करके यूज करना है ताकि उसमें हॉट और लुब्रिकेशन वाली दोनों क्वालिटीज आ जाए। तो उसको आप जब अप्लाई करेंगे, उसको अप्लाई करने के बाद आपने वहां पे स्टीम देनी है, या फिर आप वहां पे कुछ गर्म पानी की बॉटल रख सकते हैं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। एंड देन आपने एक्सरसाइज करनी है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करिए, उसको मूव करिए, उसकी मूवमेंट्स करिए ताकि उस पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, और जिन पार्ट्स में ब्लड नहीं पहुंच रहा है वहां तक ब्लड पहुंच जाए और वो पार्ट हील हो सके।
1: डॉक्टर साहब, ये बातचीत हम जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि आपके पसंद का कोई भी गाना हम आपको भी और हमारे श्रोताओं को भी सुनाना चाहेंगे। कौन सा गाना आप सबसे पहले सुनना चाहेंगे?
0: मैं किशोर कुमार का सॉन्ग है रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं तुम कभी हार के, ये प्लीज आप सुनाएं।

0: डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के एलोपैथिक ट्रीटमेंट दौर में आम जन आयुर्वेदा ट्रीटमेंट क्यों चुने, कौन कौन से प्रोसेस या तरीके हैं स्वस्थ जीवन के लिए, क्या फर्क है इनमें?
1: एक्चुअली आयुर्वेद और एलोपैथिक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो थेरेपीज हैं। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद बेटर है या एलोपैथी बेटर है। जहां पे इमरजेंसी की बात आती है वहां पे एलोपैथी कारगर सिद्ध होती है
0: जी।
1: और जहां पे क्रॉनिक डिजीज की बात आती है वहां पे आयुर्वेद जो है वो काफी हद तक सफल रहा है
0: जी।
1: आयुर्वेद में डिफरेंस ये है कि आयुर्वेद जो है पर्सन के ऊपर काम करता है, डिजीज के ऊपर काम नहीं करता
0: जी।
1: तो एक पर्सन की क्या प्रकृति है, उसकी बॉडी टाइप क्या है और उसका कौन सा दोष बड़ा हुआ है, उसकी विकृति क्या है, मतलब उसको डिजीज क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि उसको क्या मेडिसिन देनी है या उसको हमने डिटॉक्स करना है। एक्चुअली आयुर्वेद सब लोगों के लिए डिफरेंट है। तो जो डिजीज है वो उस पर्सन की प्रकृति क्या है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आयुर्वेद में जैसे मैंने पहले बताया आपको कि पांच महाभूत की जो है वो बेस है इसका, जिसकी वजह से वात पित्त और कफ तीन तरह के एनर्जीज बनती है
0: जी।
1: वात दोष जो है वो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ कि ये बेसिकली है क्या। आयुर्वेद में सात तरह की प्रकृति बताई गई है, वात पित्त कफ, वात कफ, पित्त कफ और वात पित्त कफ। ये सात तरह की प्रकृति है। इसमें बेसिकली जैसे हम बात करें कि जो वात प्रकृति है वो लोग हैं जो कि बहुत खाने के बाद भी मोटे नहीं होते, अगर बढ़ेगा भी तो उनके टमी एरिया पे फैट बढ़ता है। और ये लोग हर चीज बहुत फास्ट करते हैं, दे टॉक फास्ट, वॉक फास्ट, ईट फास्ट, लर्न फास्ट एंड फॉरगेट फास्ट। और पित्त प्रकृति जो लोग हैं उनके साथ क्या रहता है कि वो मॉडरेट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं वो लोग, गुस्सा कुछ ज्यादा रहता है उन लोगों में, डाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है, वो कुछ भी हजम कर सकते हैं, बड़ा मील लेते हैं और उनको इजी डाइजेस्ट हो जाता है और अपनी मर्जी से वो वेट कम और ज्यादा कर सकते हैं। जो कफ प्रकृति लोग हैं वो बेसिकली बॉडी बिल्डर होते हैं, अच्छी बिल्ट होती है और उनको हवा पानी भी लग जाता है, मतलब उन्हें खाने की जरूरत नहीं है, उनका वेट नेचुरली बढ़ जाता है। उनके लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क है कि वेट कैसे रिड्यूस करें
0: जी।
1: तो इस तरह से तीनों प्रकृति जब कॉम्बिनेशन में होती है तो उनके कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे उनके मेंटल और फिजिकल बॉडी में। तो आयुर्वेद ये डिसाइड करता है कि इस पेशेंट की ये प्रकृति है और इसका ये दोष इम्बैलेंस है तो उसके हिसाब से मुझे ट्रीटमेंट देना है। उसी तरह से उनका लाइफस्टाइल होगा, उस तरह से उनकी डाइट होगी। जैसे वात प्रकृति है तो वो फास्ट खाता है और उसको हर थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है तो उसको दोबारा खाना पड़ता है और उसमें एंड्यूरेंस भी कम होती है तो इसलिए उसको बीच में रेस्ट भी लेना पड़ता है। वहीं जब हम कफ की बात करते हैं तो उसको हम दोपहर को सोने के लिए मना करते हैं क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी एंड्यूरेंस ज्यादा है तो उसका कफ और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उस केस में हम उसे थोड़ा मील लेने की सलाह देते हैं। इसी तरह से जो पित्त प्रकृति पर्सन है उसकी डाइजेशन अच्छी होती है इसलिए वो ओवर ईटिंग कर लेता है तो उसको हम कॉन्शियसली ईट करने के लिए कहते हैं कि ताकि वो ओवर ईट ना करे, जिसके कारण उसकी पित्त और एग्रीवेट हो जाती है। तो इस तरह से हम डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करके हर पर्सन के हिसाब से उसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद ये मानता है कि हमारी माइंड बॉडी और सोल का अलाइनमेंट में होना जरूरी है, इसलिए आयुर्वेद जो है वो अच्छी डाइट, लाइफस्टाइल और स्लीप इसके चारों ओर ही घूमता है कि आपकी डाइट कैसी हो आपकी प्रकृति के हिसाब से। आप ये देखिए कितना अच्छा होगा अगर आपको पता है आपकी प्रकृति क्या है, उसके हिसाब से अगर आप डिसाइड करें कि मेरी डाइट और लाइफस्टाइल क्या होगा तो आप बीमारी से भी दूर रहेंगे और आप अपने ऊपर अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आयुर्वेद ये कहता है कि सिर्फ बॉडी तब अच्छे से काम करती है जब आपका माइंड स्वस्थ हो, तो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर आयुर्वेद बहुत ज्यादा जो है ध्यान देता है
0: जी।
1: उसके लिए आयुर्वेद ये कहता है कि आप मेडिटेशन करिए ताकि आपके जो भी 60,000 थॉट जो आप डेली सोच रहे हैं उसको रिलीज करने के लिए परमात्मा ने नेचुरली नींद बनाई है, जिससे हम अगर हम 6 से 7 घंटे की नींद लेते हैं तो वो हमारे थॉट्स रिलीज हो जाते हैं डेली बेसिस पे। लेकिन जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो क्या होता है कि वो अगले दिन के थॉट्स फिर एड ऑन हो जाते हैं, तो उसके लिए आयुर्वेद मेडिटेशन की सलाह देता है। और अगर हम पंचकर्मा थेरेपी की बात करें तो वो शिरोधारा के लिए रिकमेंड करता है, जिसमें कि पहले ऑरा क्लेंस किया जाता है, उसके बाद जो ब्रह्मरंध्र है हमारे फोरहेड के बीच में वहां पे ऑयल टपकाया जाता है जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिक वेव जो है मैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाती है एंड पेशेंट स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स्ड। इस तरह से हम जो है स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं।
0: अगर हम आयुर्वेदाचार्य से परामर्श लेते हैं तो उसके बाद हम अपने दोष को समझने के बाद अगर हम अपनी जीवन शैली को चेंज करते हैं तो शायद वही एक सही रास्ता होगा, हम अपने आप को स्वस्थ भी रख सकें और हम आगे की जिंदगी और अच्छे से जी सकें।
1: बिल्कुल, जब हम अपने बारे में जान लेते हैं कि हम क्या हैं, हमारी बॉडी टाइप क्या है, हमें कौन सा खाना सूट करेगा और कौन सा लाइफस्टाइल हमें सूट करेगा और क्या हमें नहीं करना है, डाइट और लाइफस्टाइल की चॉइसेस कितनी इजी हो जाती हैं, और हम उस पर स्टिक रहें तो हम लॉन्ग लाइफ भी जीते हैं और हेल्दी लाइफ जीते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं।
0: डॉक्टर शिल्पी शर्मा जी, अगर आपसे परामर्श लेना हो तो कृपया बताएं, और आपके 20 साल का जो अनुभव है उसमें आपने खासतौर पर किन किन रोगों पर परामर्श दिया है?
1: मेरा बेसिकली अंबाला शहर में निदान हीलिंग आयुर्वेदा के नाम से क्लिनिक है, और मैं अभी तक नेशनल और इंटरनेशनल कई तरह के पेशेंट जो है मुझसे कंसल्टेशन ले चुके हैं, जिसमें मेनली मैंने थायराइड, एंडोमेट्रोसिस, ओबेसिटी, इवन जिनका वेट गेन नहीं हो रहा वो पेशेंट्स, इसके अलावा रूमेटाइड आर्थराइटिस, डायबिटीज, बैकएक जिनको रहता है, या स्पाइन से रिलेटेड इशू है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या लंबर स्पाइन में दिक्कत है, या किसी को पैरालिसिस है, इस तरह के पेशेंट्स भी मैं हमने ट्रीट किए हैं।
0: तो समय क्या रहता है आपके क्लिनिक का?
1: समय सुबह 9 से 2 और शाम को 4:30 से 7:30 बजे तक,
0: और रविवार आपका
1: क्लोज रहता है।
0: आपने एंडोमेट्रोसिस की बात की, आप थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं ये क्या है?
1: जी हाँ, एंडोमेट्रोसिस बेसिकली एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव जो हमारा यूट्रस है उसके अंदर एक लाइनिंग होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब ये लाइनिंग अगर यूट्रस के बाहर भी मिलने लगे और वो सेम तरह से एक्ट करे जैसे कि वो अंदर रह के एक्ट करती है, जैसे कि जब फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसमें ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये शेड कर जाती है और वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है, लेकिन जो ये लेयर अगर ये अंदर जो ऑर्गन्स हैं जो यूट्रस के ऊपर या फिर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर या फिर अगर यूट्रस के अदर पार्ट्स पे अटैच हो जाए जैसे कि फेलोपियन ट्यूब के ऊपर या फिर हमारी जो ओवरीज हैं उन पे अटैच हो जाए तो ये भी उसी तरह से ब्लीड करेगी, वैसे ही ग्रो करेगी, बट वहां पे उसके निकलने का कोई स्थान नहीं है। तो क्या होगा, वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा, पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, उसको ब्लीडिंग बहुत होती है, फेंट हो जाता है पेशेंट कई बार तो पेन की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार फ्लो है वो ऊपर की तरफ हो जाता है जिसकी वजह से जो ओवरीज हैं वहां पे वो ब्लड इकट्ठा हो जाता है जिसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं या एंडोमेट्रियल सिस्ट बोलते हैं इसे। तो उसके कारण क्या है, पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो जाती है आगे और कई तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी और पेन बहुत ज्यादा रहता है, फटीग रहेगा उसको सारा दिन।
0: इसके साथ जुड़ा एक प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि ऐसे पोजीशन में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जो इस विषय में बात ही नहीं करना चाहते, तो आप उनको क्या कहते हैं?
1: उनको जरूर, हम लोग कई बार क्या सोचते हैं कि हमें जो पीरियड्स के दौरान पेन हो रहा है वो नॉर्मल है, वो सबको होता है तो हमें भी हो रहा है, लेकिन इसको बर्दाश्त करने का कोई भी कारण नहीं है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या जो भी लेडी डॉक्टर हैं जहां आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप उनसे मिलिए, अपने जो भी टेस्ट हैं जैसे कि इसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह MRI के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि एंडोमेट्रोसिस कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है ये टिश्यू, तो आप वो पता करिए और जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी है उससे अपना ट्रीटमेंट कराइए ताकि आपको इसका जड़ से इलाज हो सके और आप जो ये अननेसेसरी पेन बेयर कर रहे हैं इससे आपको निजात मिल सके।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक और ब्रेक का अब समय आया है, तो हम चाहते हैं कि आपके पसंद का कोई और गाना हम श्रोताओं को सुनाएं, और क्योंकि इसके बाद हम इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे तो उससे पहले ये गाना हम उनको सुनाना चाहते हैं। तो कौन सा गाना आपकी पसंद का है?
1: आप पिया बसंती रे सॉन्ग जो है वो प्लीज मेरे लिए बजाइए।
0: जी श्रोताओं, आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। चर्चा हो रही है आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर शिल्पी शर्मा जी के साथ। डॉक्टर साहब, हम सबको अपने आप से कितना प्यार करना चाहिए, यानी मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ लव की।
1: सेल्फ लव का मतलब है खुद से प्यार करना, यानी अपनी डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना
0: जी।
1: अपना ध्यान दूसरों से हटा के खुद पे लगाना
0: जी।
1: आयुर्वेद बात करता है माइंड बॉडी और सोल की अलाइनमेंट की, यानी कि अपनी फिजिकल और मेंटल बॉडी के ऊपर काम करना ताकि हम एक बेटर वर्जन बन सके। तो उसको बनने के लिए एक बहुत सुंदर संस्कृत का वर्ड है स्वार्थी, जिसका मतलब है जिसने स्व के अर्थ को जान लिया है।
0: अच्छा।
1: यानी उसको हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बता रही हूं मैं आपको
0: जी जी।
1: स्वार्थी का मतलब, सेल्फिश जो है वो तो इंग्लिश वर्ड है
0: जी।
1: जिसका मतलब कुछ और है, लेकिन स्वार्थी का मतलब है जिसने स्व के अर्थ को जान लिया है, मतलब जो खुद पे काम कर रहा है, जो खुद को जान रहा है, दैट इज सेल्फ लव। और ये सेल्फ लव जो है हमें बताया नहीं गया, ना हमारे पेरेंट्स ने, ना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, किसी ने नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं सेल्फ लव क्या होता है। उन्होंने अपने आप को ओवर एक्सटेंड करना बताया है दूसरों के लिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जब तक आपका कप फिल नहीं होगा तब तक आप उसे दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो पहले आपको अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। जब आप एक बेटर वर्जन बन जाएंगे तभी आप दूसरों के काम आ पाएंगे, नहीं तो आप हमेशा दूसरों से कुछ पाने की इच्छा रखेंगे। वहां पे चीजें कंडीशनल होंगी, अनकंडीशनल नहीं होंगी। जब आप खुद पे काम करते हैं, आप अपना बेटर वर्जन बनते हैं, तभी आप अनकंडीशनली दूसरों को सर्व कर पाते हैं, क्योंकि जो आपके पास है आप वही तो शेयर करेंगे ना। जब आपके पास होगा ही नहीं तो आप शेयर क्या करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपनी फिजिकल बॉडी पे काम करें, अपने डिटॉक्स के ऊपर काम करें, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर लाइफस्टाइल जिए, प्रॉपर डाइट लें, ताकि आप एक बेटर वर्जन बन सकें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर हम अपने आप को प्यार करेंगे और अगर हमारा जीने का तरीका स्वस्थ तरीके से अगर हम जिएंगे तो हम एक अच्छे व्यक्तित्व बन सकेंगे। आखिर में जानना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जारी की कुछ दवाइयां ना लेने की, जिसमें से मेफ्टाल स्पास भी एक है, क्या अगर हम ये दवाई ना लेते हुए आयुर्वेदा में इसका कोई रिप्लाई हो, आंसर हो, तो वो प्लीज बताएं।
1: मेफ्टाल स्पास बेसिकली पेट दर्द के लिए ली जाती है
0: जी।
1: या तो उसमें बेसिकली आयुर्वेद क्या कहता है कि जहां पे पेन है वहां पे वात बढ़ी हुई है, तो उसके लिए आयुर्वेद ये कहता है कि आप अजवाइन की चाय बना के पी सकते हैं, जिससे आपको पेट दर्द में रिलीफ होगा। इसके अलावा आप पेट पे गर्म तेल की मसाज कर सकते हैं, उसके बाद वहां पे गर्म पानी की बॉटल रख सकते हैं, जिससे पेशेंट को रिलीफ फील होगा, क्योंकि वात बढ़ने की वजह से हमें उसके ऑपोजिट करेक्टर की चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अगर आप ये चीज करेंगे तो उससे भी आपको पेट दर्द में आराम हो जाएगा।
0: तो क्या ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है?
1: हाँ जी बिल्कुल, दोनों के लिए है।
0: डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अब इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, आपसे इजाजत लेने का समय आया है। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप दोबारा भी यहाँ पे आए और हमारे श्रोताओं के साथ आप रूबरू हों, उनके समस्याओं का निदान आप करें। इन शब्दों के साथ ही मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: मैं श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने आज मुझे सुना। मैं उम्मीद करती हूं कि इस वार्तालाप से आपको कुछ लाभ हुआ होगा, आपको आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, और मैं ये चाहती हूं कि आप इसको फॉलो करें और जीवन में आयुर्वेद को अपनाएं। मैं 90.0 FM का भी धन्यवाद करना चाहती हूं। यहां पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं इस माध्यम के थ्रू भी आप लोगों तक पहुंच पाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर शिल्पी शर्मा आयुर्वेदाचार्य के साथ की गई बातचीत आप सुन रहे थे। आपकी बातचीत का विषय था आयुर्वेद और उपचार। डॉक्टर शिल्पी शर्मा आयुर्वेदाचार्य के साथ बात कर रहे थे भारत सोपोरी।
1: श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज आपके लिए लाया हूं एक सकारात्मक कहानी। एक बार एक राजा के 3 पुत्र थे। राजा ये जानना चाहता था कि उसका कौन सा पुत्र अधिक बुद्धिमान है, मुश्किल हालातों में कौन सबसे अधिक सकारात्मक सोच अपनाता है। राजा ने तीनों पुत्रों को एक एक सिक्का देकर कहा कि इस सिक्के से कुछ ऐसा खरीदो जिससे तुम्हारे कक्ष का कोना कोना भर जाए। रात को मैं तुम तीनों के कमरों का निरीक्षण करूंगा। बड़े राजकुमार को लगता था कि 1 रुपए से ऐसा कुछ नहीं खरीदा जा सकता जिससे कमरे का कोना कोना भर जाए, इसलिए वो कुछ भी खरीद नहीं पाया। दूसरे राजकुमार ने थोड़ी बुद्धि लगाई और बाजार से भंगार खरीदकर अपने कमरे के चारों कोनों में फैला दिया। सबसे छोटा राजकुमार सकारात्मक सोच वाला था। वो सोचने लगा कि मेरे पिता एक इतने बड़े राज्य के राजा हैं। अगर उन्होंने एक सिक्का दिया है ऐसी चीज खरीदने को जिससे कमरे का कोना कोना भर जाए, तो जरूर कुछ न कुछ तो ऐसा वास्तविकता में होगा। अपने पिता की बात को ध्यान से समझकर वो बाजार से दिए खरीद कर लाया। उसने कमरे के सभी कोनों पर रखे थे जिससे उसके कक्ष का कोना कोना रोशनी से भर गया। राजा ने रात्रि को तीनों पुत्रों के कक्षों का निरीक्षण किया। राजा ने तीनों पुत्रों को पास बुलाया। राजा ने कहा कि जब मैंने सिक्का खर्च करने को कहा था तो मैंने उससे क्या खरीद सकते हैं उसका संकेत भी दिया था। मैंने कहा था कि मैं रात्रि में तुम्हारे कक्ष में आऊंगा, तुम्हारे कक्ष का कोना कोना बड़ा होना चाहिए, लेकिन तुम दोनों ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि तुम दोनों की सोच नकारात्मक थी कि इससे ऐसा कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे छोटे भाई की सोच सकारात्मक थी, उसने समाधान पर ध्यान दिया, उसने बाजार से दिए खरीदे और अपने कक्ष का कोना कोना रोशनी से भर दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जब हम नकारात्मक सोच रहे होते हैं तो हम समस्या के आने पर समस्या को इतनी बड़ी मान लेते हैं कि समाधान पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यह थी आज की कहानी और उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छी लगेगी। आप अपना फीडबैक जरूर हमें दें और अगर आप भी कहानियां लिखते हैं तो आप अपनी मौलिक कहानियां हमें भेजें। अगर उस कहानी को हमने सही पाया तो हम उसको आवाज देके लोगों तक पहुंचाएंगे। आप अपनी कहानियां हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है radiovitasta@gmail.com या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

जाई जाई तू सब्जार सुकोता हुसन सारक खुदाई ऐसे पोषण अगिन ये सोन वतन मुबारक खुदाई ऐसे पोषण अगिन ये सोन वतन मुबारक।

फिल्मी गीतों का ये सफर आप तय करेंगे अपनी रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आदाब।

तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरी सांसों में बसी है खुशबू की तरह।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक, इन मौसमों के गुम हो जाने तक, कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

जिंदगी यूं ही गुजर गई बिना बात कहे। इस अंजमन में बातें हुई पर वो बात रह गई जो सीने में दफ।

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद मैं अपनी बात कह पाता।

ढलते ही सुबह का उजाला एक नई उम्मीद को जन्म देती है। फूलों के चमन में बुलबुल शबनमी बूंदों में नहा रहे हैं और ये दौड़ते बादल सारे आकाश को नीला करते हुए खुद को छिपा रहे हैं बादलों की कतारों में। यह हमारी सुबह का आगाज मुस्कुराहट से भरपूर।

परछाइयों के इस शहर में अब खाली है मेरा आंगन। काश कहीं से धूप निकल आती, शायद हम उनके दीदार कर पाते, उनको फिर से अपने सीने की आग से रूबरू कराते और ये बताते कि मैं अभी भी सुलग रहा हूं तुम्हारी मोहब्बत में। तस्कीने दिल की खातिर वादा तो कीजिए, हम जानते हैं आपसे आया न जाएगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 6। आज की फिल्म है काला पत्थर। कार्यक्रम पेश करेंगे राहुल अलियान। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान। लेकर आया हूं कार्यक्रम फिल्मी किस्से का एपिसोड 6 और पहली बार मेरी आवाज में। उम्मीद करता हूं आपको ये अंक अच्छा लगेगा। इस प्रोग्राम में हम बॉलीवुड की कोई मशहूर फिल्म का चयन करते हैं जिसके फिल्मी किस्से आपको सुनाते हैं और इसी फिल्म के गीत भी। आज हम बात करेंगे फिल्म काला पत्थर की। फिल्म काला पत्थर जो 1979 में बनी थी, जिसे यश चोपड़ा ने निर्देशित किया था, हिंदी सिनेमा की एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। इसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, नीतू सिंह और प्रवीण बाबी जैसे बड़े सितारे थे। फिल्म की कहानी कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी और उनके संघर्षों पर आधारित थी। आइए सुनाता हूँ इसी फिल्म का एक मशहूर गीत, उसके बाद इसी फिल्म के फिल्मी किस्से भी। बने रहिए हमारे साथ।

अमिताभ बच्चन का किरदार विजय एक ऐसा इंसान था जो अपने अतीत के बोझ से जूझ रहा है। यह किरदार वास्तविक जीवन में चासलाना खदान दुर्घटना जो 1975 में हुई थी से प्रेरित बताया गया था। इस घटना में सैकड़ों मजदूरों की मौत हो गई थी। फिल्म की कहानी उस दर्दनाक घटना और मजदूरों के जीवन संघर्षों को दिखाने की कोशिश करती है।

कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के बीच असल जिंदगी में कुछ अनबन थी, लेकिन फिल्म के दौरान उन्होंने पेशावर तरीके से काम किया। यह पहली बार नहीं था जब अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक साथ काम किया, लेकिन इस फिल्म में उनकी बॉन्डिंग को खास सराहा गया। सेट पर भी इनके बीच का दोस्ताना माहौल चर्चित रहा।

काला पत्थर एक आलोचनात्मक सफलता थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। हालांकि समय के साथ इसे एक क्लासिक फिल्म माना गया। फिल्म के लिए यश चोपड़ा ने असली कोयला खदानों का इस्तेमाल किया। शूटिंग धनबाद और आसपास के इलाकों में हुई, जिससे फिल्म को एक प्रमाणिक लुक मिला। कोयला खदानों में शूटिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वहां का माहौल बेहद कठिन था।

गाने उतने लोकप्रिय नहीं हुए, लेकिन इसके डायलॉग जैसे अमिताभ बच्चन का संवाद हमारे नाम से कोई बदनसीब जुड़ा है काफी मशहूर हुआ। फिल्म का संगीत राजेश रोशन ने दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार फिल्म की जान माना जाता है। उनके दमदार डायलॉग और अलग अंदाज दर्शकों को खूब भाया। कहा जाता है कि उनके किरदार को फिल्म में खास तौर पर जोड़ा गया ताकि मसाला एंटरटेनमेंट बढ़े।

काला पत्थर केवल एक ड्रामा फिल्म नहीं थी, यह मजदूरों की दुर्दशा और पूंजीपतियों के शोषण पर एक तीखी टिप्पणी भी थी। फिल्म ने समाज में मजदूर वर्ग की समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की। यह फिल्म आज भी उन दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती है जो समाज के जमीनी मुद्दों को सिनेमा के जरिए समझना पसंद करते हैं।

इसके साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा, मिलता हूँ अगले एपिसोड में किसी और फिल्म के साथ। आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010 पर, या आप मेल भी कर सकते हैं radiovitasta@gmail.com पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से और आज की फिल्म थी काला पत्थर। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राहुल अलियान ने। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा हर्ट्ज रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो। सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 10। आज के आमंत्रित मेहमान है वैदिक मैथमेटिक्स एक्सपर्ट आशीष गुप्ता, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता भारत सोपोरी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, लेके आया हूं कार्यक्रम इनसे मिलिए का एक और अंक। अंकों की बात करूं तो गणित का ध्यान आता है, तो श्रोताओं क्यों ना आज गणित की ही बात करें। गणित हमारे वेदों में भी पढ़ा और पढ़ाया गया है। वैदिक गणित की खोज जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारतीय कृष्ण तीर्थ जी ने किया। वेदों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने 7 साल लगाए और 16 सूत्र जो लिखे थे उन पर काम किया, जिन्हें बाद में वैदिक गणित कहा गया। क्या है ये वैदिक गणित, मुझे भी जिज्ञासा हो रही है, क्या आपको हो रही है? और श्रोताओं क्या हमारे बच्चों को भी ये जिज्ञासा हो रही है? इसीलिए आज हमने आमंत्रण दिया है एक वैदिक मैथमेटिशियन को, जिनको लोग अब वैदिक सर से ही जानते हैं। वैदिक सर का नाम है श्री आशीष गुप्ता जी, जो एक सर्टिफाइड इंटरनेशनल ट्रेनर है वैदिक मैथ्स के। आशीष जी, आपका स्वागत और अभिनंदन इस कार्यक्रम इनसे मिलिए में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर बैठे हैं वैदिक मैथमेटिक्स, तो कहीं ना कहीं बहुत ही रोचक विषय है और मेरे दिल के बहुत करीब भी है। तो सर अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू कर लेते।
1: जी जी, हमारे श्रोता आपके बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी प्राथमिक शिक्षा हुई और आज आपकी दिनचर्या क्या रहती है?
2: सर मेरा जन्म जो है वो चंडीगढ़ में हुआ और उसके बाद मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो अलग अलग जगह पर रही, बिकॉज मेरे जो पिताजी थे वो गवर्नमेंट सर्विस से थे, तो जैसे उनकी पोस्टिंग होती थी मुझे भी उनके साथ कई बार शिफ्ट करना पड़ा। शुरुआती शिक्षा मेरी बराड़ा एक गांव है जहां पर शुरुआती शिक्षा मेरी 5वीं कक्षा तक हुई
1: जी।
2: उसके बाद हम लोग अंबाला कैंट आए और यहां पर मेरी आगे की शिक्षा चली और इसके बाद कुछ समय मैंने चंडीगढ़ में भी शिक्षा ग्रहण की और वहां से मुझे वापस मैं अंबाला आया। अपनी ग्रेजुएशन मैंने यहां कंप्लीट की। इसके बाद मैंने सीए की पढ़ाई भी की कुछ समय तक, लगभग 5 साल मैंने सीए की पढ़ाई में लगाए
1: जी।
2: और उसके बाद फिर मैंने काम करना शुरू किया सर
1: जी।
2: शुरुआती दौर में मैंने टीचिंग का करियर ऑप्ट किया और बच्चों को ट्यूशन्स देना स्टार्ट किया
1: जी।
2: और ट्यूशन्स देते देते ही मैंने ये चीज़ रियलाइज की कि बच्चों को कहीं ना कहीं गणित के अंदर बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती है, जो मैंने भी अपने बचपन में कहीं ना कहीं फेस की थी
1: जी।
2: तो वहां से मुझे कहीं ना कहीं एक अंदर से प्रेरणा मिली थी कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं या कुछ ना कुछ ऐसा सीखूं जो मेरे लिए और आगे बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद हो, क्योंकि जो समस्याएं मैंने अपनी एजुकेशन में झेली थी मैं चाह रहा था कि वो बच्चे ना फेस करें। तो इसी संकल्प को लेकर मैंने वैदिक मैथमेटिक्स सीखा और अभी मुझे लगभग 7 साल हो गए हैं वैदिक मैथमेटिक्स की लाइन में और आज भी मैं कहूंगा कि मैं सीख रहा हूं
1: जी।
2: क्योंकि एक अच्छा शिक्षक हमेशा एक लर्नर की एप्टीट्यूड रखता है, एक सीखने का उसके अंदर हमेशा से जिज्ञासा रहती है।
1: हम इस कार्यक्रम को आगे चलाते हैं, आपसे पहला प्रश्न करता हूं। आज का विषय है वैदिक मैथ या वैदिक गणित, सबसे पहले हमें विस्तार में बताइए वैदिक मैथ क्या होता है, क्या ये प्राचीन प्रणाली मानी जाती है, इसका इतिहास क्या है और क्या ये हमारे धर्म के साथ भी जुड़ा है?
2: ये बहुत ही अच्छा सवाल है सर। वैदिक गणित जैसे नाम है इसका, तो इसके जो सूत्राज हैं ये हमारे वेदाज में से ही लिए गए हैं
1: जी।
2: जैसे कि सब जानते हैं कि हमारे 4 वेदाज हैं
1: जी,
2: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इसमें से जो अथर्ववेद है उसी में से वैदिक गणित के सूत्राज को लिया गया है। और आपने बहुत खूबसूरती से शो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि कैसे भारती कृष्ण तीरथ जी ने लगभग 7 साल इसके ऊपर रिसर्च किया और इसके सूत्राज को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद की। और आज जो हम वैदिक गणित पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो उन्हीं की देन है, तो उन्हें फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं और इन सूत्राज के ऊपर ही सारा वैदिक मैथमेटिक्स हमारा टिका हुआ है और आज की तारीख में ये काफी लोगों में प्रचलित भी होता जा रहा है।
1: आपसे मैं इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न करना चाहूंगा। आपने वैदिक गणित की जो बात की, अगर ये वेदाज के साथ जुड़ा है, इसके साथ हम स्कूलों में क्यों नहीं जुड़े हैं, हमें स्कूलों से वैदिक गणित के बारे में क्यों जानकारी नहीं है?
2: जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और मेरा भी ये कहीं ना कहीं सवाल रहा था जब मैंने इसको सीखना शुरू किया कि हमने अपने स्कूल टाइम में ये चीज क्यों नहीं सीखी। दरअसल समस्या सर कहाँ होती है, जब भारत पर अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया तो अंग्रेजों ने पाया कि भारत का जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है वो बहुत ही मजबूत है और ये कहीं ना कहीं इस हमारे जो कल्चर की नींव है, तो उन्होंने सोचा कि अगर हमें भारत को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले इनकी शिक्षा व्यवस्था हमें खत्म करनी होगी। तो उसी कड़ी में अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल बनाने शुरू किए, जहां पर हमारे जो वेदास थे पढ़ाई जाते थे उनको उन्होंने बंद करना शुरुआत कर दिया।
1: वो पिछड़ गए समय के साथ,
2: जी,
1: वो पिछड़ गए।
2: जी, जी, जी, जी, जी। तो समय दर समय क्या हुआ, आने वाले समय में जो हमारे जो कल्चर था हमारा वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित, ज्योतिष, इन सभी सब्जेक्ट्स को क्या हुआ, लोगों ने डिसरिगार्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन आज का दौर क्या है सर, आपका देखिए जनरेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जनरेशन है, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं रह सकती, कभी ना कभी तो वो सामने आएगी,
1: सब कुछ अवेलेबल,
2: सब
1: है।
2: कुछ आएगा
1: जी।
2: और ऐसे ही वैदिक मैथमेटिक्स ने भी, क्योंकि एक ऐसी कला है जो छुप नहीं सकती
1: जी,
2: दोबारा से रिवाइव हुआ कला ये और अब लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं सर।
1: अब मैं भी आपको कार्यक्रम में वैदिक सर ही बुलाऊंगा, विशेष गुप्ता जी
2: जी।
1: और वैदिक सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वैदिक मैथ्स के सिद्धांत क्या है और परंपरागत गणित से ये अलग कैसे है, क्या ये आज के शिक्षा प्रणाली में प्रयोग किया जा सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि इस समय बच्चे जो है वो एग्जाम्स के लिए तैयार हो चुके हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, अगर उन बच्चों को कोई आपके प्रश्न से कोई उत्तर मिल जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो पूरी होगी।
2: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। वैदिक गणित के अगर सिद्धांतों की हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि ये 16 सिद्धांत जो है मुख्य तौर पर यही काम करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स
1: जी,
2: और जो ये 16 सिद्धांत हैं ये वही सिद्धांत है जिन पर हमारा ब्रेन काम करता है। तो जब हम वैदिक मैथमेटिक्स किसी बच्चे को सिखाते हैं तो इसमें कुछ गणनाएं ऐसी होती हैं जो आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उन गणनाओं को प्रोसेस करने के काबिल होता है। अगर शुरुआत से ही बच्चे को इस चीज में ढाला जाए तो आप देखेंगे कि आगे चलकर उसके लिए मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं रहेगा, उसके लिए एक खेल बन जाएगा,
1: जो खेल खेल में वो खेल अच्छे से कर पाएंगे,
2: अच्छे से कर भी पाएंगे और उनका जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट के अंदर वो और बढ़ेगा। शुरुआती दौर में मुझे बड़ी मुश्किल आती थी मैथ्स के अंदर, तो लेकिन जब मैंने वैदिक मैथमेटिक्स सीखना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ही इंटरेस्ट लगा इसके अंदर और मैंने पाया कि ये इतना आसान सब्जेक्ट था जिसे हम स्कूलों के अंदर बहुत ही अनफॉर्चुनेटली मुश्किल एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के तौर पर लेके चलते हैं।
1: ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि कुछ उदाहरण के तौर पर, जैसे इस समय हम रेडियो प्रोग्राम में है, हमारे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है या हमारे पास ऑनलाइन बोर्ड नहीं है, तो कुछ उदाहरण आप बताइए कि जिस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये वैदिक मैथमेटिक्स या वैदिक गणित जो है ये परंपरागत गणित के साथ कैसे जुड़ा है।
2: जी, इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि अगर कोई आप संख्या लें जिसका एंडिंग में 5 आता हो, 5 आता हो,
1: से हम 15 लेते हैं,
2: हाँ 15 से थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते
1: हैं, 85 लेते हैं,
2: 85 लेते हैं
1: जी।
2: अगर सपोज मुझे इसका स्क्वायर करना है, 85 का स्क्वायर करना है, तो अगर मैं परंपरागत मैथ्स का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी,
1: ठीक है,
2: लेकिन अगर मैं वैदिक मैथ्स का इस्तेमाल करूं तो इसके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें करना क्या, आपने जो 8 की संख्या है 85 में उसको आप 9 से गुणा कर दीजिए, कितना आया 72 और जो पीछे 5 था उसको बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से ही, तो आया 25। अगर आप इसको चेक करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपका आंसर बनता है 7225।
1: ओके, तो ये एक तरीके से हम ये मान के चले कि ये एक तरीके से मैथमेटिक्स का, एक गणित का शॉर्टकट है, अगर हम अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल करें और यूज करें।
2: जी जी,
1: कहीं ऐसा तो नहीं है हम कहते हैं कि जब हमें जिंदगी में तरक्की करनी है तो उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शॉर्टकट आने वाले दिनों में उस बच्चे को कुछ नुकसान कराए?
2: जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो चीज हमारे वेदास में हमारे पूर्वजों ने हमें एक तोहफे के तौर पर दी है
1: जी।
2: मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले 7 साल से मैं वैदिक मैथ्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, मुझे तो आज तक इसके फायदे ही हुए हैं, नुकसान आज तक कोई नहीं हुआ है।
1: नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने भी बीएससी की है और मैथमेटिक्स है और मैं भी मैथ में अच्छा नहीं रहा हूँ। जैसे आपने बोला कि 85 का जैसे हमें स्क्वायर निकालना है, हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे,
2: 8 को उसकी अगली संख्या जो 9 आती है।
1: अच्छा अच्छा,
2: कोई भी
1: 8 की जो अगली संख्या है 9 उससे हम गुना करेंगे तो वो 72 आया, यानी 72 आया, और जो 5 था उसको हम उसी से गुना करेंगे, वो 25 आया तो आपने उसका रिजल्ट निकाला
2: जी।
1: तो क्या यही प्रोसेस है गणित का, जो वैदिक गणित का, कि हमें कोई भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो हम कुछ ही क्षणों में उसका आंसर निकाल सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारे टेक्निक्स हैं या कह लीजिए इसमें जैसे सूत्रास दिए गए हैं, तो उन सूत्रास का अलग अलग एप्लीकेशन है जिससे हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आसान कर सकते हैं।
1: बहुत ही जिज्ञासा वाला सब्जेक्ट है और मेरे लिए भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी वैदिक गणित जो है वो सीखना चाहिए, और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे, हम आपकी क्लासेस भी जरूर ले लेंगे
2: जी।
1: अगला प्रश्न सर आपसे करता हूँ, वैदिक गणित को तेज और प्रभावी होने के लिए जाना जाता है, क्या कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं? जैसे आपने अभी दिया, मैं चाहूंगा कि एक और कोई उदाहरण हो जो ये भी साबित कर दे कि जो हम इसकी गणना करते हैं वो कम से कम समय में कर सके।
2: जी, दोबारा से मैं एक उदाहरण स्क्वायर्स का ही ले लेता हूँ क्योंकि वो जल्दी समझ में भी आ जाएगा श्रोताओं को
1: जी।
2: जैसे अगर हम मुझे कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसी संख्या लें जो 100 के नजदीक है और मुझे उसका स्क्वायर करना है
1: जी।
2: तो वही वापस से अगर मान लीजिए मुझे 105 का स्क्वायर करना है
1: जी।
2: तो मैं क्या करूंगा, 10 को
1: 11
2: से गुणा कर दूंगा और 5 का दोबारा से 5 से गुणा कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 11025। और अगर 100 से नीचे की कोई संख्या है, मान लीजिए 97 है, 97 का मुझे स्क्वायर करना है, तो मैं क्या करूंगा, 97 में से जितना वो 100 से दूर है
1: जी
2: उतना और माइनस कर दूंगा। जैसे 97 100 से 3 दूर है,
1: दूर है, ठीक है,
2: तो 3 उसमें से माइनस कर दीजिए,
1: वो हो गए
2: 94
1: हो गए।
2: और 94 के पीछे मेरे पास 2 डिजिट्स का स्पेस बचा है, तो उसके अंदर मैं 3 का ही स्क्वायर करके लिख दूंगा।
1: ओके,
2: तो 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन क्योंकि मेरे पास 2 डिजिट्स का स्पेस था तो मैं लिखूंगा 09, तो इसका जो पूरा आंसर बनेगा वो बनेगा 9409।
1: बहुत खूब, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ना तो पेन की जरूरत है और ना घर वालों की डांट जरूरत है, हमें सिर्फ अपने ब्रेन को यूज करना है, अपने दिमाग को यूज करना है और हम अपनी समस्याओं का समाधान गणित के हिसाब से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन रिप्लाईज के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि वैदिक गणित का क्या योगदान है और आजकल के कॉम्पिटिटिव दौर में ये बच्चों के एग्जाम में कितना लाभदायक है?
2: जी, वैदिक मैथ्स का अगर आप देखेंगे, पहले तो नहीं लेकिन अब स्कूल्स ने भी इसको पहचानना शुरू किया है। मैं अगर अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं, मैं अंबाला के अंदर लगभग 20 से ज्यादा स्कूल्स के अंदर वैदिक मैथ्स और ब्रेन जिम की वर्कशॉप्स लगा चुका हूं, तो जहां से बहुत ही खूबसूरत रिस्पॉन्स हमें मिला और बच्चों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। और जहां तक बच्चों के एजुकेशन का सवाल है कि कैसे इसमें इस्तेमाल होगा, बेसिकली आपको जैसे अब 5th ऑनवर्ड्स अगर आप देखें, बच्चे को बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाती है
1: जी।
2: तो वहां से बच्चा इसको सीखना स्टार्ट कर सकता है,
1: ठीक है।
2: और आगे चल के उसको, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, प्लस टू के बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा, तो वहां पर तो इसका बहुत वास्ट स्केल पे यूज होता है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो कोई एंट्रेंस एग्जाम,
1: ऑप्शनल आंसर्स होते हैं उसमें,
2: ऑप्शनल होते हैं, और साथ में वैदिक मैथ्स का बहुत वास्ट यूज वहां पर होता है जी।
1: जी
2: जी, तो वहां पर हम इसको बहुत प्रेफर करते हैं कि आप वैदिक मैथ्स अगर इनिशियल स्टेजेस में सीखते हैं तो वो आगे चलकर आपको बहुत फायदा करेगा।
1: आपके अनुभव से जिन बच्चों को आपने आज तक पढ़ाया है, क्या एक साधारण बच्चा, जिसको हम ये कहेंगे कि जो पढ़ाई में साधारण है और एक उच्च स्तर पर है, क्या हर लेवल के बच्चे वैदिक गणित को अच्छे से समझ पाते हैं और उसका यूज कर पाते हैं?
2: इसमें मैं थोड़ा सा अपना भी बताना चाहूंगा कि शुरुआत में मैं मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं था
1: जी।
2: जैसे कि आपने अपना उदाहरण दिया
1: जी।
2: और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज्यादातर बच्चे क्लास के अंदर मैथ्स और साइंस, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें थोड़ा सा उनको मुश्किल आती है, क्योंकि तो जब मैं वैदिक मैथ्स में आया तो मुझे एहसास हुआ कि पहले मेरे पास ये चीज क्यों नहीं आई, पहले मुझे सीखने का मौका क्यों नहीं मिला, तो एक थोड़ा सा गिल्ट और रिग्रेट भी मेरे मन में था। बट कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है, जो परमात्मा ने आपसे करवाना होता है,
1: वही
2: मिलना है हमें, तो बस ये कह लीजिए एक डेस्टिनी का खेल था।
1: पर मुझे एक चीज की खुशी है कि जो कमी आपने महसूस किया, पर आपने उस कमी को अब और बच्चों के लिए दूर करने की एक कोशिश आप कर रहे हैं और आपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। जो कमी हमारी रही, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो आज के युवा है, उनको वो कमी ना रहे। तो इसके लिए ऐसे ही आपको जो बच्चे हैं, वैदिक सर नहीं बुलाते हैं, तो वैदिक सर हम आपसे एक अलग सा एक प्रश्न करना चाहेंगे। गणित तो हर जगह इस्तेमाल होता है, क्या संगीत में भी गणित का प्रयोग होता है? अगर होता है तो कौन सा ऐसा गणित या कौन सा ऐसा गीत आपके चॉइस का है जो हम आपको और श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
2: देखिए, गणित का विषय तो दिमाग से चलता है और जो संगीत का विषय आपने बताया वो दिल से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है
1: जी।
2: तो ऐसे ही एक पुराने गाने हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जिनमें से एक गाना है लिखे जो खत तुझे, तो ये बहुत ही पुराना
1: वो तेरी याद में
2: है। तेरी याद
1: जी जी, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छा गाना है ये। श्रोताओं, आइए हम आपको सुनाते हैं वेदिक सर यानी आशीष गुप्ता जी का एक मनपसंद गीत जो है लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। मैं आप सभी श्रोताओं को ये भी कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के लिए अगर आपका कोई प्रश्न है आप हमें व्हाट्सएप वॉइस मैसेज के माध्यम से हमें भेजिए और हम कोशिश करेंगे वेदिक सर से आपके सवाल का जवाब भी लेंगे। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप हमारे साथ हैं FM 90.0 MHz पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए, और हमारे साथ है आशीष गुप्ता जी, जिनको वैदिक सर के नाम से जाना जाता है। वैदिक सर, आपसे एक और प्रश्न मैं करना चाहूंगा। भारत के बाहर वैदिक गणित का प्रयोग अधिक लोग नहीं जानते हैं, आप इसको वैश्विक रूप से कैसे प्रस्तुत और कैसे इसको बढ़ावा दे सकते हैं, खासकर शिक्षा प्रणाली में?
1: जी, भारत के बाहर की जहां तक बात है तो ऐसा कहना गलत हुआ कि भारत के बाहर लोग इसको नहीं जानते हैं। जहां तक मैंने देखा है कि भारत के बाहर जो इंडियंस गए हुए हैं, भारतीय लोग हैं
0: जी,
1: वो बहुत ही ज्यादा अवेयर हैं अपने बच्चों को लेकर। और मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आती हैं, जैसे कि US है, कनाडा है, ऐसे देशों से ऑनलाइन क्लासेस के लिए वैदिक मैथ्स की
0: जी।
1: तो बाहर के भी लोग जो है इसको अप्रिशिएट करते हैं और सीखने में उनकी रुचि रहती है जी, क्योंकि बाहर के लोग जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले रहते हैं और उनका बहुत रुचि है हमारे कल्चर को जानने में
0: जी।
1: सिर्फ वैदिक मैथमेटिक्स की ही बात ना करें, और भी चीजें जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई हैं उसमें बहुत रुचि लेते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स भी उसमें से एक है। इसके अलावा हम लोग जो क्या काम करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स को विश्व पटल पर लाने के लिए, हम लोग अपनी ऑनलाइन वर्कशॉप्स करते हैं
0: जी।
1: हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं जहां से हम इसको प्रमोट करते हैं विश्व भर के अंदर, और रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा आता है इसको लेकर।
0: वैदिक सर, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात
1: जी,
0: तो जो आप शिक्षा बच्चों को देते हैं
1: जी,
0: तो कौन से प्लेटफॉर्म से आप देते हैं?
1: जी, हम लोग जूम या गूगल मीट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए
0: जी।
1: और यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से हमारे लिए एक फायदा ये रहता है कि बच्चा किसी भी कोने में हो दुनिया के, वहाँ बैठकर अपने घर पर बैठकर इस विद्या को सीख सकता है, इस गणित को सीख
0: तो
1: सकता
0: आपके
1: है।
0: साथ जितने भी बच्चे आज तक जुड़े हैं
1: जी,
0: तो उनमें से आप बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आपके साथ जो स्टूडेंट्स है वो कहाँ कहाँ से आपके साथ जुड़े हैं?
1: अगर मैं भारत की बात करूं तो मेरे पास तमिलनाडु और गुजरात, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, पंचकुला और इवन जम्मू से, तो इस तरह से बहुत से अलग अलग स्टेट से हमारे साथ बच्चे ऑनलाइन माध्यम से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं भारत के बाहर की बात करूं तो USA है, कनाडा है, हालांकि वहां टाइम जोन का थोड़ा फर्क रहता है। जैसे अगर सुबह के 7:30 बजे भारत में होंगे तो वो रात के 8:30 बजे US में होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मैनेज करते हैं टाइम जोन्स के अंदर भी और ऑनलाइन क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं।
0: इसका मतलब हम ये मान के चलें कि जो वैदिक गणित है वो केवल भारत में ही नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि ये वैश्विक रूप से पढ़ा भी जाता है और लोग इसके बारे में जानते भी
1: हैं।
0: कुछ रिसर्च में वैदिक मैथ्स की भ्रांतियों के बारे में कहा गया है, आप इसको कैसे स्पष्ट करना चाहेंगे?
1: देखिए, भ्रांतियां क्या है, जैसे अगर किसी आम इंसान को आप वैदिक मैथ्स के बारे में बताएंगे कि जैसे ही मैथ या गणित शब्द आता है तो दिमाग में आता है संख्या, कि कहीं ना कहीं इससे हमारा शायद कैलकुलेशन और नंबर्स को सॉल्व करने की जो काबिलियत है वो बेहतर होगी। लेकिन इसके साथ वैदिक मैथ्स के और भी फायदे हैं। जैसे अगर आप वैदिक मैथ्स सीखते हैं कोई भी बच्चा, तो उसमें क्या होता है, उनकी जो एकाग्रता शक्ति है, कॉन्सेंट्रेशन पावर है, वो काफी बढ़ जाती है। दूसरा, वो जो मैथ्स को लेकर उनके मन में एक फोबिया है, डर है, वो कहीं ना कहीं डर दूर हो जाता है। और अगर आपने बच्चे के मन से वो डर निकाल दिया तो फिर आपको उसको सिखाना नहीं पड़ेगा,
0: वो खुद ही
1: सीखना शुरू कर देगा,
0: उनकी दिलचस्पी उसमें उतनी बढ़ेगी।

0: कि वो उसमें और रिसर्च करना चाहेंगे और करेंगे
1: जी जी
0: और फिर आगे अपने आप को काबिल उसके
1: काबिल बना।
0: मुझे आप ये बताइए कि हमने कई बार टेलीविजन में देखा कुछ ऐसे बच्चे सामने आते हैं जो उंगलियों पर इतने बड़े बड़े मैथमेटिकल क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, क्या उसका बेस वैदिक गणित ही है या कुछ और है?
1: जी, वो जो आपने देखा होगा बच्चे जो फिंगर्स के थ्रू काउंटिंग करते हैं और मेंटली काउंट कर लेते हैं बड़ी संख्याओं को, उसमें वैदिक मैथ्स के अलावा अबैकस का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अबैकस जो है हमारा वो पहली से पांचवी कक्षा तक सीमित है
0: जी,
1: और जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो शुरुआत ही उसकी पांचवी कक्षा के बाद होती है।
0: और ये कहाँ किस कक्षा तक होती है?
1: ये इसका अपर एज लिमिट कोई नहीं, नहीं है। तो अगर आप बड़े भी हैं उम्र में, अगर आपकी पढ़ाई पूरी भी हो चुकी है और आप शौकिया तौर पर वैदिक मैथ सीखना चाहें तो भी आपका स्वागत है, आप शौकिया तौर पर भी वैदिक मैथ सीख सकते हैं।
0: तो चलिए, मैं तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहूंगा कि आपका अगला स्टूडेंट मैं हूं। मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है वैदिक मैथ सीखने के लिए, वैदिक गणित के बारे में जानने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जहां जहां हम रेडियो के माध्यम से जाते हैं तो मैं इस बात का भी प्रचार करूंगा कि हमें जो हमारे वेदों ने दिया है तो हम उसको अगर अपनाएं तो हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी श्रोताओं को कहा था कि अगर आपका कोई प्रश्न है, हमारे पास व्हाट्सएप पे एक प्रश्न आया है और ये प्रश्न आया है अम्बाला सिटी से और ये है सिया शर्मा। तो आइए सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है।
2: My name is Siya Sharma from PKI Jain Vatika. I just wanted to know that is Vedic maths efficient for higher classes also?
0: जी, ये प्रश्न आया है अम्बाला सिटी से और आपने प्रश्न सुना, कृपया इसका उत्तर दें।
1: तो सिया, पहले तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि वैदिक मैथ्स की जो शुरुआत होती है वो पांचवी कक्षा से लेकर ही होती है और इसका कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप अगर सीनियर क्लासेस में भी हैं, दसवीं में, बारहवीं में, और अगर आप कॉलेज में भी हैं या आप कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर चुके हैं उसके बाद भी कभी भी आप वैदिक मैथ्स सीख सकते हैं। हालांकि अगर आप जितना जल्दी हो सके इसको सीखना शुरू करेंगे तो आगे आने वाली पढ़ाई में आपको ये उतना ही फायदा करेगा और समय के साथ साथ आपकी ये कला निखरती जाती है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पिछले 7 साल से वैदिक मैथ सीख रहा हूं, तो इसमें जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना आप इसमें प्रवीण होते चले जाएंगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सिया, आप रेडियो वितस्ता के कार्यक्रमों के साथ पहले भी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये प्रश्न हमें भेजा और हमने कोशिश की इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। वैदिक सर, अब हमारे पास एक और गुंजाइश है यहाँ पर श्रोताओं को आपके एक मनपसंद और गीत को सुनाने के लिए, और हम चाहेंगे कि कौन सा ऐसा गीत है जो आप सुनना पसंद करेंगे और श्रोताओं तक पहुँचाना चाहेंगे।
1: जी, एक बहुत ही पुराना गाना है जिसमें है आने वाला कल जाने वाला है, तो ये एक मैसेज भी हमें देता है, तो ये काफी खूबसूरत संगीत है।
0: आइए श्रोताओं सुनते हैं ये गीत, आपके पास अभी कुछ क्षणों के बाद आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 10। आज के आमंत्रित मेहमान थे वैदिक मैथमेटिक्स एक्सपर्ट आशीष गुप्ता, जिनको वैदिक सर से भी जाना जाता है। रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

ہم سفر ہم راز ہوں تا قیامت, تا قیامت

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

महके तो भंवरा वहीं जाए, दिल का पपीहा तेरे ही पास आए। मेरा दिल है वो पागल पंछी के

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जी हाँ, आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रमन कुमार शर्मा। आपसे बातचीत होगी, बातचीत का विषय है हमारे शरीर में खून की अहमियत क्या है।
2: डॉक्टर साहब आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। आज हम बात करेंगे इंसान के लिए खून की अहमियत क्या है।
3: देखिए मराठा साहब, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो खून है हमारे शरीर में, उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि बिना खून के हम एक पल भी नहीं जीत सकते। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी क्रियाएं हैं वो सब खून के संचार पर आधारित हैं।
2: जी,
3: खून की मात्रा उचित होना ठीक है, ज़रूरी है हमारे शरीर में, और उसका पूरा संचार होना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई
2: जी,
3: तापमान का संचार, मतलब जिसको हम टेम्परेचर रेगुलेशन कहते हैं
2: जी,
3: वो खून के जरिए ही होता है, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन और वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीशन, ये सारे जितने भी काम हैं ये सारे हमारे शरीर में खून ही करता है।
2: जी,
3: तो जैसे कहते हैं ना कि जल जीवन है, जल ही जीवन है, और देखा जाए तो हमारे शरीर में जितना खून है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पानी ही है।
2: जी,
3: तो जो खून है उसकी अहमियत जल जल के बराबर की गई है।
2: जी जी,
3: जैसे जल ज़रूरी है वैसे ही हमारे शरीर में खून ज़रूरी है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, एक शरीर के लिए कितनी मात्रा में खून होना चाहिए।
3: देखिए अमूमन जो इंसानी शरीर है उसमें 5-6 लीटर, जो एक हेल्दी इंसान है उसके शरीर में 5-6 लीटर खून होता है। लेकिन इसमें भी एक, जो हम टेक्निकली हम बोलें तो हमारे शरीर में RBC काउंट जो है, रेड ब्लड सेल कॉर्पसल्स जो होते हैं, उनकी मात्रा उचित होना ठीक है।
2: जी,
3: जिसकी जिसका अंदाज़ा हम लगाते हैं कि जब हम ब्लड का एक टेस्ट करते हैं तो एक हेल्दी इंसान में, एक स्वस्थ महिला में और एक स्वस्थ
2: पुरुष
3: में ये मात्राएं थोड़ी वेरी करती हैं। जैसे कि एक स्वस्थ पुरुष में ये मात्रा होनी चाहिए 10 मिलीग्राम से 13 मिलीग्राम।
2: जी, यानी तभी उसको आप हेल्दी
3: पर डेसिलीटर,
2: तभी हेल्दी इंसान के
3: हेल्दी कह सकते हैं। और यही जो मात्रा है ये थोड़ी सी कम है महिलाओं में, ये 9 मिलीग्राम से 13 मिलीग्राम पर डेसिलीटर जो है वो मात्रा होनी चाहिए।
2: जी जी,
3: इसे हम परसेंटेज में भी कहते हैं, जैसे 9% या 10%, ये लेबोरेटरीज में वेरी करता है कि वो किस मापदंड से उसको लेते हैं।
2: यानी जब आप खून की इस तरह की जांच पड़ताल होती है तो जाहिर है कि लगता है कि ये नॉर्मल हेल्दी इंसान है। अगर इस तरह इतनी मात्रा उसमें खून है,
3: हाँ इसमें है, तो अगर वो इतनी मात्रा है तो वो स्वस्थ है।
2: महिलाओं में आपने बताया कि 9 मिलीग्राम से लेकर 13 मिलीग्राम तक, और पुरुषों में आपने बताया कि 10 मिलीग्राम से लेकर 14 मिलीग्राम तक।
3: अगर इनसे मात्रा अगर कम है तो हम कह सकते हैं कि कुछ पैथोलॉजिकल या कुछ शरीर में खराबी है,
2: उसके बाद जांच पड़ताल होती है।
3: जांच पड़ताल होनी जरूरी है
2: जी जी,
3: उसकी और ज्यादा जांच पड़ताल होना जरूरी है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर खून में किसी तरह की कोई खराबी पाई जाती है, कारण क्या हो सकता है।
3: ये खून में खराबी हो जाना कारण जो है वो उचित अनुचित आहार विहार है, हमारा रहने सहने का ढंग ठीक नहीं होगा।
2: नहीं, किस तरह की खराबी पाई जाती है। अगर एक पेशेंट आपके पास आता है तो कहता है कि आम भाषा में कि मेरे खून में खराबी है।
3: देखिए पहले तो उसका जो परीक्षण है हम दर्शन से करेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फिर उससे पूछेंगे कि आपको क्या क्या महसूस होता है। अगर वो कहता है कि हाँ मेरे खून में कुछ खराबी है, तो उसका उसकी तसल्ली के लिए हम, और अपनी तसल्ली के लिए हम उसको उसका खून जो है वो लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। उसके मुताबिक जो रिजल्ट्स उसके एनालिसिस के आते हैं उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे।
2: किस तरह की खराबी होती है खून में इंसानी?
3: वो त्वचा रोगों से ज़्यादा ही परेशान होते हैं या ग्रस्त होते हैं, तो वो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमें खून की खराबी है तो हमें उसके लिए उपचार चाहिए। तो संबंधित जो भी उपचार होता है वो हम देने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन सबसे पहले ज़रूरी यही है कि खून की जांच की जाए। अमूमन जो लोग आते हैं हमारे जनरल प्रैक्टिस में, उनको जो आम बीमारी है उसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं। तो उसमें क्या है कि बड़े बड़े छाले जैसे बन जाते हैं, कभी कभी एकदम से कपड़े खोलेंगे तो छाले बनेंगे शरीर के ऊपर, निशान बन जाएंगे। उसमें ज़्यादा खारिश होती है, रेडनेस भी ज़्यादा आ जाती है, तो थोड़ी देर बाद वो सबसाइड भी हो जाता है। कुछ कुछ लोग जो हैं वो लोकल उपचार जो है वो करते हैं उसका, लेकिन उसकी जांच होना बड़ा ज़रूरी है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है।
2: यानी ये सारी चीज़ें जब आप एक इंसान में पाई जाती है तो आप एकदम से जांच पड़ताल
3: जांच जांच के लिए हम उसका खून ज़रूर भेजेंगे।
2: जी जी डॉक्टर साहब, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। आपकी पसंद का कोई गीत आप सुनवाना चाहेंगे अपने सुनने वालों को?
3: अच्छा मरार साहब, आप हमें सुना दीजिए तुमसे अच्छा कौन है ये गाना है।
2: जी, एक अभी नई फिल्म है
3: जी,
2: यानी नई फिल्मों से गीत आप सुनना पसंद करते हैं?
3: जी हाँ
2: जी।

0: डॉक्टर रमन कुमार शर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे खून की कमी के कारण क्या हो सकते हैं। अगर मतलब इंसानी खून में कमी पाई जाती है तो कारण क्या हो सकते हैं?
1: हम इसे ऐसे कहेंगे कि हमारे शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो उसका कारण क्या होगा, कारण क्या क्या हो सकते हैं।
0: जी,
1: तो सबसे पहले कारण तो आम जो हम देखते हैं वो है अनुचित आहार और विहार। आहार से मतलब है कि हम खाना प्रॉपरली नहीं खाते हैं, और दूसरा विहार है कि हम ठीक तरीके से अपनी क्रियाएं या जो कार्य हैं वो ठीक तरीके से नहीं करते।
0: जी,
1: विहार से मेरा मतलब है कि हमारा रहन सहन जो है वो अच्छा नहीं होता।
0: हम्म।
1: अब आहार में अगर हम खाना जो है ठीक वक्त पे नहीं खाएंगे, उचित मात्रा में नहीं खाएंगे और हर प्रकार का खाना नहीं खाएंगे, हम उसको अनुचित आहार कहेंगे।
0: जी,
1: अनुचित विहार को मैं ये कहूँगा कि जब इंसान को जागना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब कौन सा काम करना चाहिए, इसको हम अनुचित विहार कहेंगे। तो अब अनुचित आहार में मैं एक बात कहूँगा कि जो ये जो अनीमिया है इसमें विरुद्ध आहार, मतलब जो है कॉन्ट्राडिक्टरी जो डाइट्स हैं, अगर हम वो ले लेते हैं तो उसके कारण भी ये होता है। मसलन हमने दूध खाने के बाद खटाई खा ली, तो या और कोई चीज़ ऐसी खा ली जो हजम नहीं होगी बाद में, तो उसके कारण जो है खाना ठीक तरीके से पचेगा नहीं। जब पचेगा नहीं तो वो अब्जॉर्ब कहाँ से होगा, तो जो खाने में उसके कंटेंट्स हैं, जो उसकी गुणवत्ता है, वो हमारे शरीर में नहीं जाएगी। तो अर्थ उसका जो अर्थ वो ये निकलेगा कि हमें अनीमिया हो जाएगा।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, महिलाओं में अक्सर खून की कमी पाई
1: जी
0: जाती
1: हाँ,
0: है।
1: ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि महिलाओं में खून की कमी ज़्यादा इसलिए पाई जाती है क्योंकि जब वो 11-12 साल की उम्र जब अटेन कर लेती हैं और उससे ज़्यादा 50 तक की उम्र तक, तो उनमें जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं उसकी क्रिया हर महीने देखने को मिलती है। तो उस दौरान जो है जो यूट्रस जो है वो अपने आप को रिपेयर करता है, तो उसमें खून की बहुत सारी मात्रा जो है वो उसका नुकसान हो जाता है।
0: ये एक नेचुरल प्रोसेस
1: हाँ,
0: है
1: ये नेचुरल
0: महिलाओं
1: प्रोसेस
0: के
1: है।
0: लिए।
1: जी हाँ
0: जी जी
1: जी हाँ, तो उसके दौरान मतलब ये एक हर महीने एक तो होगा, और कुछ महिलाओं में देखा जाता है कि वो ज़्यादा मात्रा में खून जो है खून का स्राव होता है,
0: जी जी
1: तो उसके कारण अनीमिया की शिकायत हो जाती है।
0: जी
1: अगर नॉर्मल जो है वो नॉर्मल स्राव होगा तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा बहुत कष्ट होता है लेकिन बाद में नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ महिलाओं में ऐसा है कि वो एक डिजीज़ का रूप ले लेती हैं, उसके कारण उनको अनीमिया हो जाता है।
0: जी जी
1: तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह, अगर किसी महिला में ऐसा देखने को मिलता है तो उसको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए
0: जी जी
1: उनको।
0: डॉक्टर साहब, प्रसव के दौरान भी इस तरह
1: हाँ
0: की शिकायत पाई जाती है महिलाओं में
1: हाँ
0: खून
1: जी
0: की कमी।
1: जी जी जी ये ऐसा है कि जब प्रसव होता है तो एक एमरजेंसी के तौर पे लिया जाता है कि जब प्रसव होता है
0: जी
1: उसमें
0: जी
1: बच्चे की जान भी खतरे में होती है, माँ की जान भी खतरे में होती है। तो कई महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि जब प्रसव हो जाता है तो उसके बाद ब्लीडिंग होती है। प्रसव के दौरान तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती ही होती है, लेकिन उसके बाद भी कई बार ज़्यादा हो जाती है, उसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो उसको उसका उसका एकदम से इलाज ये है कि आपके पास खून का प्रबंध होना चाहिए, उसी ब्लड ग्रुप का प्रबंध होना चाहिए, ताकि जैसे ही जो वहाँ पे डॉक्टर हैं उनको मालूम चले कि
0: जी
1: इनको खून की कमी हो गई है तो एकदम से उनको ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं।
0: जी
1: तो उनको निकटतम प्राथमिक से स्वास्थ्य केंद्र या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितनी जल्दी हो सके उनको मेडिकल अटेंडेंस मिलना बड़ा ज़रूरी है।
0: अच्छा, प्रेगनेंस के दौरान भी क्या महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है?
1: जी हाँ, उसमें ऐसा है कि खून की कमी, खून खून की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जो एक गर्भवती महिला है वो अकेली नहीं जी रही, उसके साथ उसका बच्चा भी उसके पेट में जी रहा है। तो अब उसकी खून की आपूर्ति जो है वो भी उसी की जो जो माँ उसका माँ उसकी आहार खाएगी उसी में से वो निकालेगा। तो अब उसके ऊपर दो लाइफ्स जो है वो डिपेंड करती हैं।
0: यानी ज्यादा स्ट्रेस आप देते
1: हाँ
0: हैं कि आहार पे,
1: जी
0: खाने
1: हाँ
0: पीने की
1: जी हाँ,
0: चीजें।
1: ये आपने बड़ा अच्छा सवाल है किया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपने आहार और विहार का खूब ख्याल रखना चाहिए, ताकि उनका जो होने वाला बच्चा है वो अच्छे तरीके से हिष्ट पुष्ट हो, उसका जन्म जो है वो अच्छे तरीके से हो
0: और
1: उसका।
0: प्रेगनेंसी के दौरान खून टेस्ट वगैरह जरूरी
1: जी
0: करवाने चाहिए,
1: हाँ
0: ताकि
1: जी
0: पता
1: हाँ
0: चले
1: ये
0: कि आपके पास
1: जी
0: कितना
1: हाँ
0: मिलीग्राम।
1: ये जब जब एक महिला जो है वो गर्भवती हो जाती है तो उसका एक कार्ड बनता है, वो वक्त वक्त पे जाके वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच करवा सकते हैं। उनको वहाँ से फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी मिलती हैं और टेटनस के इंजेक्शन वगैरह भी लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब एक औरत को मालूम चल जाए कि हाँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या गर्भवती हूँ, तो उसको ये चाहिए, उसके घर वालों को चाहिए कि उसको मेडिकल अटेंडेंस दी जाए।
0: जी, और ज़्यादा स्ट्रेस देना है कि
1: खाने
0: खाने
1: पे,
0: पीने की।
1: आहार पे,
0: जी
1: उसको
0: जी
1: बैलेंस डाइट जो देना जो
0: और
1: है
0: ये भी
1: वो बहुत
0: देखना है
1: जरूरी
0: कि
1: है।
0: ब्लड की कहीं पे कोई कमी तो नहीं पाई जा
1: हाँ
0: रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये वक्त वक्त पे जो खून का टेस्ट है वो होते रहना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, रक्तदान करना कितना जरूरी है?
1: देखिए रक्तदान करना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो रोगग्रस्त हैं, उनको खून की बहुत ज़रूरत रहती
0: जी
1: है। कुछ रोगी ऐसे हैं कि अगर उनको रक्तदान ना किया जाए तो वो शायद अगले ही दिन मर जाएंगे।
0: जी
1: अब रक्तदान करना आम आदमी के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर हम वक्त पर वक्त वक्फे के बाद अगर हम रक्तदान ना करें तो हमारे जो ब्लड बैंक्स हैं उनमें ब्लड की कमी आ जाएगी। रक्तदान उससे करवाते हैं तो पहले उसका बकायदा पूरा टेस्ट होता
0: पूरी
1: है,
0: जांच पड़ताल होती
1: क्या
0: है,
1: ये रक्तदान करने के
0: काबिल है।
1: काबिल इंसान है कि
0: जी
1: नहीं
0: जी
1: है, क्या ये काबिल, मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, बस ये है कि वो स्वस्थ है कि
0: जी
1: नहीं है
0: जी जी
1: और उसको दिमागी तौर पे भी पूरा प्रिपेयर होना पड़ता है कि हाँ मैं रक्तदान कर रहा हूँ।
0: यानी किसी की जिंदगी को बचाना
1: हाँ
0: सबसे बड़ी बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये डॉक्टर साहब, कब कब रक्तदान करना चाहिए? जब हमने रक्तदान एक बार किया, उसके बाद कब हम कर सकते हैं?
1: देखिए रक्तदान जब एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो रक्तदान करता है तो उसको मिनिमम 3 महीने का गैप देना चाहिए, उससे पहले उसको कभी भी रक्तदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके शरीर में ही कमी आने की, रक्त का अभाव होने का अंदेशा हो जाता है। कई लोग तो मेकअप कर लेते हैं,
0: जी
1: अपना खाना पीना पूरा रखेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन वैसी नौबत कभी नहीं आनी चाहिए कि आप 3 महीने से पहले रक्तदान करें,
0: जी
1: उससे आपके शरीर को ही नुकसान हो सकता है।
0: क्या उम्र होनी चाहिए, किस उम्र में आप रक्तदान कर सकती हैं?
1: देखिए 18 साल से लेके 45 साल की उम्र तक जो है रक्तदान इंसान कर सकता है,
0: जी
1: और ये डिपेंड कर, इससे कम तो हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे भी तो शायद नहीं करेंगे।
0: जी जी
1: तो एक मेरा मेरा मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि जो भी रक्त देने के लायक इंसान है, जो स्वस्थ इंसान
0: जी
1: है,
0: जी यानी
1: जो हाँ
0: फिजिकली,
1: फिजिकली जो फिट
0: मेंटली,
1: है,
0: टेक्निकली वो फिट
1: हाँ
0: है।
1: फिट है, उसको रक्तदान करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है आज दुनिया में।
0: डॉक्टर रमन जी, हम यहाँ पे विराम देंगे अपनी बातचीत को, और आपकी पसंद का दूसरा गाना अपने सुनने वालों तक
1: देखिए
0: पहुंचाना चाहेंगे।
1: मराठा साहब, अब आप मेरे को गाना सुना दीजिए, मुझसे शादी करोगी,
0: इस फिल्म से कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: ये टाइटल सॉन्ग।
0: इस फिल्म का टाइटल
1: जी
0: सॉन्ग।
1: हाँ

0: डॉक्टर रमन कुमार शर्मा हमारे साथ हैं आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अब हम इस कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आए हैं। खून की मात्रा शरीर में नॉर्मल रहे,
1: ठीक है,
0: क्या करना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि जितना इंसान को पानी दिन में पीना चाहिए वो जरूर पीना चाहिए। उसकी मात्रा मैं आपको बताता हूँ, कम से कम 3 लीटर पानी जो है वो एक, जब एक इंसान अपना पूरी क्रियाएं पूरे दिन में कर रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, तो कम से कम उसको, एक एडल्ट जो व्यक्ति है उसको 3.5 से 4.5 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, और समय से खाना खाना चाहिए
0: जी,
1: समय से सुबह उठना चाहिए। उसकी जितनी भी वृत्तियां हैं, मतलब जो वो काम करता है उसको प्रॉपरली करना चाहिए ताकि वो मेंटली सेटिस्फाइड भी रहे, प्रोफेशनली सेटिस्फाइड।
0: आहार में कोई खास चीज लेनी चाहिए
1: जी
0: जिसे
1: हाँ,
0: खून की कमी नहीं हो?
1: जी, उसको हर व्यक्ति को हरी सब्जियां, दूध, जो मांसाहारी हैं वो लोग मांस ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, और जो शाकाहारी लोग हैं उनको हरी सब्जियां, दूध, और जो पत्तेदार सब्जियां हैं वो लेनी चाहिए, चने हैं उनमें आयरन ज़्यादा रहता है
0: जी।

0: आहार में मैं ये कहूँगा कि उचित मात्रा में खाएं, बैलेंस डाइट खाएं और वक्त पर वक्त खाएं। ये नहीं।
1: आपने आपने पानी को ज्यादा अहमियत दी है,
0: जी
1: पीने
0: हाँ
1: का पानी जो
0: जी
1: हम
0: हाँ जी
1: इस्तेमाल
0: हाँ
1: करते
0: वो इसलिए
1: हैं।
0: है क्योंकि जो पानी है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सॉल्वेंट की बड़ी ज़रूरत रहती है। अब हमारे जो आंतरे आंतरे हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें से जो आयरन, जो महत्व है जिस चीज़ का हमारे आहार में, वो उसको अब्जॉर्ब करने के लिए पानी बड़ी ज़रूरी है।
1: आपने कहा कि कितना पानी पीना चाहिए दिन में?
0: 3.5 से 4.5 लीटर,
1: जी,
0: 4 से 5 लीटर हो जाए नो प्रॉब्लम। अगर आप ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन नॉर्मल अगर आप व्यायाम करते हैं तो इतना पानी ज़रूर पीना चाहिए।
1: आमतौर पर महिलाएं ये मांस वगैरह नहीं खाती हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप, क्या खाना चाहिए?
0: देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि हरी पत्तेदार सब्जियां और पनीर, पनीर की अहम मात्रा है, मतलब बहुत ही महत्व है पनीर का हमारे डाइट में, क्योंकि दूध जो है दूध का बाई प्रोडक्ट है। तो इस दुनिया में कहा गया है कि दूध जो है वो कंप्लीट डाइट है, तो इसलिए दूध दूध का महत्व भी ज़्यादा है, दूध भी लेना चाहिए। और इसके अलावा हॉर्स ग्राम है, जिसे हम चने कहते हैं, काले चने कहते हैं, वो खाना चाहिए। उसमें जो आयरन का मात्रा है वो काफ़ी रहता है।
1: जी, और समय समय पर ये भी चेक करवाना है
0: हाँ,
1: कि
0: ताकि
1: खून की
0: पता चलता
1: मात्रा।
0: रहे। जी हाँ, ये गर्भिणियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने खून की जांच जो है वो करवाते रहें, ताकि अगर कोई कमी हो तो वक्त रहते पता चल सके और उसका उपचार हो सके, ताकि उनके आने वाले जो जो उनका आने वाला बच्चा है उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना हो उनके उनकी अनीमिया की कंडीशन का।
1: और किसी तरह कोई मेडिसिन होती है जो ली जाती है अगर खून
0: जी
1: की कमी
0: हाँ
1: है?
0: जी हाँ, जब गर्भिणियाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाती हैं या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाती हैं, तो अगर उनके खून में कोई कमी पाई जाती है या उनके उनके शरीर में खून की मात्रा कम है, तो उनको आयरन सप्लीमेंटेशन दी जाती है, उसके साथ उनको फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी दी जाती हैं, और ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त मिलती हैं। ये भारत सरकार का एक अभियान है, अभी तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी आ गया है, उसके तहत
1: जी,
0: काफ़ी उनका टारगेट ही यही है कि जो जच्चा बच्चा है वो स्वस्थ रहे।
1: डॉक्टर रमन कुमार शर्मा, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते अपनी पसंद का कोई गीत बताइए जो हम अपने सुनने वालों तक इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचाएंगे।
0: देखिए साहब, आप हमें फना फिल्म का कोई भी गाना सुना दीजिए, वो
1: जी
0: चांद सिफारिश जो करता हमारी।
1: जी, शान की आवाज में।
0: जी
1: जी,
0: हाँ,
1: इस गाने के लिए शान को अभी एक पुरस्कार भी मिला है, फिल्म
0: अच्छा,
1: फेयर
0: जी
1: पुरस्कार
0: जी जी
1: भी
0: जी
1: मिला
0: जी
1: है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन कुमार शर्मा, आप हमारे साथ बने रहे,
0: ओके, धन्य साहब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर रमन कुमार शर्मा से की गई बातचीत आप सुन रहे थे। आपकी बातचीत का विषय था हमारे शरीर में खून की अहमियत क्या है। आपके साथ बातचीत कर रहे थे रमेश मराठा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। अंबाला के प्यारे श्रोताओं, आज हमारे पास अंबाला के इतिहास और गर्व से जुड़ा एक बेहद खास तोहफा है। आप सब जानते हैं कि अंबाला का शहीद स्मारक अब बनकर तैयार है। ये वो पावन भूमि है जिसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई का बिगुल फूंक कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज किया था। ये स्मारक हमारे शहीदों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है और इसी महान विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए अंबाला के जाने माने संगीतकार श्री विशाल गोल्डी, ओम नमो साउंड्स, जिन्हें हम विशाल शर्मा के नाम से भी जानते हैं, लेकर आए हैं एक जबरदस्त स्वतंत्रता संग्राम थीम सॉन्ग। ये गीत अंबाला की मिट्टी की कहानी कहता है, उस जज्बे को सलाम करता है जिसने देश को आजाद कराने की लौ जलाई। इस गीत को विशाल गोल्डी और हरजीत बिट्टू ने मिलकर लिखा और कंपोज किया है। ये धुन आपके दिल में देशभक्ति का एक नया जोश भर देगी। पेश है अंबाला के गौरवशाली इतिहास को समर्पित शहीद स्मारक थीम सॉन्ग सभी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के श्रोताओं।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दुनिया।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

खातर अरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 एफएम रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 705641310 पर। क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर।
3: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। ४०० साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जाने। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: हाथ छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया था हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चलें साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

तू ख्वाब ना देखे कर, ख्वाबों में आ जाऊंगा।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

इच्छु भोजन एफ एम नमत आचार्य सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन भोजन रोजू पन पसंदीदा बात।

तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो रेडियो वत्तस्ता 90.0 मेगा हर्ट्ज़ ते सुनते रहो अपने

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 7। इसमें हम आपको पुराने हिंदी फिल्मी गाने सुनाते हैं। इस कार्यक्रम को पेश करेंगे आरजे किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन दिया भारत सोपोरी ने।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। दोस्तों, शब्दों से भरी दुनिया में कुछ आवाजें दिलों को छू जाती है और कुछ सुरों का जादू हमें यादों के सफर पर ले जाता है। आज का ये सफर उन्हीं सुरों के संग होगा जो कभी मुस्कान बनेंगे तो कभी आंखों में नमी लाएंगे। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरने, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और पेश कर रही हूं आज का कार्यक्रम सरगम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के गीतों का सिलसिला। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं प्रेम रोग के गाने से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने, जिसके बोल लिखे हैं आमिर कजालबश ने और संगीतकार है लक्ष्मीकांत।

लीजिए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म शोर का गाना, जिसे लिखा है संतोष आनंद ने और जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब आपकी नजर पेश है फिल्म जुदाई से गाना, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और उसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और गाया है आशा भोसले ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, जिसको आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, और जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म है सुहाग।

लीजिए आप सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने और जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

सभी श्रोताओं के लिए अगला गाना है आनंद बख्शी का लिखा हुआ, जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने, और फिल्म फर्ज का गाना है ये।

अगला नगमा है फिल्म असली नकली से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, और जिसको संगीत दिया है हसरत जयपुरी ने, और उसके बोल लिखे हैं शंकर जयकिशन ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सरगम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अगली पेशकश है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीतबद्ध किया हुआ गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म है सुहाग, और उसको अपनी आवाजों से सजाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

अब सुनते हैं राजेंद्र किशन का लिखा हुआ गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, जिसको संगीत दिया है शंकर जय किशन ने, और फिल्म है सच्चाई।

0: दो चार दिन।
1: कार्यक्रम का अगला गाना है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके गीतकार है साहिर लुधियानवी और संगीतकार है खयाम, और फिल्म कभी कभी से लिया गया है।

कार्यक्रम का आखिरी गाना है फिल्म अजनबी से, जिसके संगीतकार है आरडी बर्मन, गीतकार है आनंद बख्शी और आवाजें दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

इसके साथ ही सरगम का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं radiovitasta@gmail.com पर। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 7, जो पुरानी हिंदी फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम था। पेश किया आरजे किरणी ने। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल कल्याण ने। एडिट व निर्देशन दिया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

वो देखो चांद निकल आया है, शायद जमीन पे उतरने का इरादा है। हमारी राहें मुनव्वर होंगी, अंधेरे अब दूर हो जाएंगे। अब रोशन होगा ये जहां और हम ढूंढेंगे वो चेहरे जो गुम हो गए थे बरसों पहले।

चांदनी रातों के बाद एक ऐसी ही सुबह का इंतजार रहता है जो मेरे लिए गुलाबी सुबह बन जाए। आओ आओ तुम्हें इन बर्फीली हवाओं का एहसास कराएं। चल मेरे साथ कोहसारू के उस पार जहां पल भर के लिए अब मर जाएं।

चुपके चुपके तुम्हें निहारता रहा देर तक। मेरे आगोश में कभी पनाह तो लीजिए जरा, शायद सिमट जाए इस शब की तन्हाई।

खुशबू का एहसास दिलाती हो और छोड़ जाती हो वीरान पत्थरों की बस्ती में। इकरार भी करते हो और लौट के आते भी नहीं हो, चंद फासले ही दरमियां, पर फिर भी दूरियां मिटती नहीं।

खूबसूरत रंगों से सराबोर जिंदगी के हैं मुख्तलिफ रंग। छू कर तो देखिए जरा, इन्हीं रंगों से महकेगी आपकी दुनिया। वो जो पीछे छोड़ आए सतरंगी दुनिया, भला उसे याद करने की जरूरत ही क्या? पर उसे आप दिल के निहाखानों में महफूज तो रख सकते हैं।

मौसमों का बदलना अपनी जगह सही है, और यही वजह है तभी शायद कायनात का संतुलन बरकरार है। अब जरा आप महसूस करिए मौसम बहार की आमद। हवाओं में ताजगी कहीं से गिरते आबशारों से निकलता मधुर संगीत, और मुसाफिर चलते जीनत बनाते पगडंडियों की कच्ची फिसलती रेत पे अपना रास्ता बनाते राही हमराही के संग मंजिल की तलाश में बेपरवाह होकर यही सोच लिए छू जाएंगे अब

0: दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आज के कार्यक्रम से इजाजत। नमस्ते।
1: जी, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:50। श्रोताओं, एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आपका अपना पसंदीदा स्टेशन रेडियो वितस्ता, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। अब समय हो चला है हमारे आज के खूबसूरत सफर को यहीं विराम देने का और आपसे विदा लेने का भी। लेकिन जाने से पहले, जैसे कि रेडियो वितस्ता की परंपरा है, हम आज के दिन के महत्व और कुछ बेहद जरूरी बातें आपसे जरूर करना चाहेंगे जो हम सभी के जीवन से जुड़ी है। तो आज का दिन क्यों खास है श्रोताओं? आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज भारत और दुनिया में दो बड़े संवेदनशील विषयों पर जागरूकता फैलाने के लिए विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जा रहा है। आइए इन दोनों विषयों पर गहराई से बात करते हैं, इनकी समस्याओं को समझते हैं और इनके समाधान पर भी विचार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे की। महासागर हमारी धरती का फेफड़ा है जो हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देता है और मौसम को संतुलित रखते हैं। लेकिन आज हमारे स्वार्थ के कारण ये गहरे संकट में है। पहले बात करेंगे समस्या की, उसके बाद समाधान की। समस्या, सबसे बड़ी समस्या है प्लास्टिक प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में बहा दिया जाता है जिससे समुद्री जीव मर रहे हैं। इसके अलावा औद्योगिक कचरे और केमिकल के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। अब इसका समाधान हम आपको बता देते हैं। पहला, सिंगल यूज प्लास्टिक को अलविदा कहें। हमें अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद करना होगा। दूसरा, जिम्मेदार पर्यटन। जब भी हम समुद्र तटों या नदियों के किनारे जाएं, वहां कचरा ना फैलाएं। तीसरा, जागरूकता। रेडियो वितस्ता के माध्यम से हम आपसे अपील करते हैं कि पानी के स्रोतों को साफ रखने में अपना योगदान जरूर दें, क्योंकि हर छोटी नदी और नाला अंततः समुद्र में ही मिलता है। अब बात करते हैं आज के दूसरे विशेष दिन की, जो है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। मस्तिष्क यानी ब्रेन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रेन ट्यूमर में एक गंभीर बीमारी है, लेकिन सही समय पर जानकारी और इलाज से जान बचाई जा सकती है। इसके प्रति अज्ञानता ही सबसे बड़ी समस्या है। पहले समस्या की बात करते हैं, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं इसका समाधान भी हम समझने लगेंगे। लेकिन पहले समस्या की बात करते हैं। लोग अक्सर शुरुआती लक्षणों को सामान्य सिर दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आधुनिक जीवन शैली में बढ़ता तनाव, रेडिएशन का अत्यधिक एक्सपोजर और खराब खान पान भी स्वास्थ्य के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहा है। इसके प्रमुख लक्षणों में लगातार तेज सिर दर्द, उल्टी आना, धुंधला दिखना या अचानक दौरे पड़ना शामिल है। इन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। समाधान यह है कि लक्षणों को ना छुपाएं। अगर सिर दर्द लगातार बना रहे तो बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर ना खाएं, बल्कि न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। दूसरा, स्वस्थ जीवन शैली। तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान यानी मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें। तीसरा, नियमित जांच। अर्ली डिटेक्शन यानी जल्द पहचान ही इस बीमारी का सबसे बड़ा समाधान है। सही समय पर सीटी स्कैन या एमआरआई से इसका पता लगाया जा सकता है। ये थे आज के दो विषय और उम्मीद करते हैं कि इन विषयों से आपको जानकारी बहुत सारी मिल गई होगी। श्रोताओं, प्रकृति और स्वास्थ्य ये दोनों ही हमारे जीवन के दो सबसे मजबूत स्तंभ है। महासागरों को स्वच्छ रखकर हम अपनी धरती को बचा सकते हैं और सेहत के प्रति जागरूक रहकर हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि हम आज के इस प्रसारण को यहीं पर समाप्त करें। जाने से पहले रेडियो वितस्ता के सभी प्यारी श्रोताओं के नाम एक विशेष विदाई शायरी जो हर दिन आपके लिए मैं लाता हूं। पंक्तियां यूं है, लहरों की गूंज में छुपा है जीवन का हर रास्ता। लहरों की गूंज में छुपा है जीवन का हर रास्ता, सदा खुशियों से महकता रहे आपका यह वास्ता। आज विदा लेते हैं इस दुआ के साथ आपसे, आज विदा लेते हैं इस दुआ के साथ आपसे, सदा गूंजती रहे दिलों में रेडियो वितस्ता। जी हां, सदा गूंजती रहे दिलों में रेडियो वितस्ता। जाने से पहले कल के कार्यक्रमों का विवरण जल्दी जल्दी से। कल 9 जून 2026 मंगलवार को हमारी सभा की शुरुआत होगी। सुबह 5:58 पर वंदे मातरम से हमारी सभा की शुरुआत होगी और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे भक्ति संगीत, 7:05 पर कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2 हमारे साथ होंगी हरजीत कौर लांबा। पेश करेंगे आरजे किरनी और 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय एपिसोड 9 गुरु दक्षिणा पेश करेंगे आरजे शिवानी। 9:30 आप सुनेंगे सरगम एपिसोड 1 पेश करेंगे आरजे किरनी और 10:20 पर कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 1 और 2 बजे भक्ति संगीत, 6 बजे आप सुनेंगे और 6:30 शाम गजल, 7 बजे रेट्रो हिट्स एपिसोड 5 शीर्षक होगा यादें और 8:30 सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है कब आओगे तुम। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे। अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगे, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। अब आप अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। कल मिलते हैं सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।